मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 25 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समूह स्वर में। हिम से आच्छादित हिमालय की चोटियां आकाश को छूना चाहे, मेरे देश का मान बढ़ाकर विश्व में ऊंचा स्थान दिलाए, शीश मुकुट बनकर देश की शोभा बढ़ाए। प्राकृतिक सुंदरता का भंडार है इसमें, हरियाली का कारण कहलाए, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय दुश्मन के छक्के छुड़ाए। पर्वत श्रृंखलाएं परिवार है इसका, पार्वती का घर कहलाए, ऋषि मुनि तप कर यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाए। हिम से आच्छादित हिमालय की चोटियां आकाश को छूना चाहिए।

0: हरिओम शरण के गाय इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध अब निश्चित है। दोनों पक्ष की सेनाएं रणभूमि में आमने सामने हैं, लेकिन शत्रु पक्ष में अपने गुरुओं, ताऊ, चाचा, मामा, श्वशुर, साले आदि को देखकर अर्जुन विचलित हो जाते हैं कि इन सके संबंधियों को मारकर मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, न कांक्षे विजयम न च राज्यम सुखानि च। तब श्री कृष्ण ने दुखी अर्जुन को देखकर जो उपदेश दिया वही गीता है। गीता परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश तो देती है, लेकिन वह कर्म जिसमें कर्तव्य बोध हो, जिसमें धर्म हो और अधर्म अहंकार का विनाश हो। गीता के अध्ययन से अनेक जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है, गीता में उत्तर है, आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है न मरती है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। वासांसि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। भारतीय समाज ने चार वर्णों की जो संरचना है उसे देखकर भी प्रश्न उठते हैं कि यह क्यों, किसने बनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणियों के गुण और कर्मों के अनुसार ही मैंने चार वर्णों की रचना की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणाकर्म विभागशः। गीता मनुष्य को काम, क्रोध, अहंकार, मोह, असत्य, दंभ जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग कर तप, दान, सत्य, अभय, अहिंसा, अक्रोध, दया, यज्ञ आदि सात्विक प्रवृत्तियों को जीवन में अपनाने का संदेश देती है, जिससे मानव समाज का कल्याण हो। गीता एक मित्र की भांति मानसिक अवसाद के अंधेरों से निकालकर धर्म, सत्य, ज्ञान, कर्तव्य के उस मार्ग पर ले जाती है जहां अहम भाव का विसर्जन हो जाता है, अज्ञानता तिरोहित हो जाती है। ज्ञान की प्रकाश किरण ने निष्काम कर्म के पथ को प्रकाशित कर आजीवन उस पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मन के अहंकार रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी लौ से हरने वाला दीपक है गीता। अनुकूल प्रतिकूल, मोह शोक, राग द्वेष, दुख उत्साह सभी परिस्थितियों में समान बने रहने का संदेश है गीता। कर्म कर्म का गीत गुनगुनाने वाली वाणी है गीता। अकर्मण्यता को जीवन का ध्येय नहीं अपितु कर्म को अधिकार बताकर पल पल फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है गीता। कर्म जीवन की आवश्यकता है। सोए हुए शेर के मुख में हिरण अपने आप नहीं चला जाता। कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र बन गया था, वहां कौरवों के रूप में अहंकार, लोभ, असत्य आदि दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो गई थी। सत्य त्याग की जीत हुई थी। इस प्रकार गीता जिन उपदेशों, संदेशों, प्रेरणाओं का संकलन है वह युग युग में प्रासंगिक रहेंगे।
0: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर पद्माक्षी अवस्थी का था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदेश्री का है। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सबको नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन गायक स्वर सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंदेश्री का था। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट हल्बी बोली में।
1: काश्तकार दादा दीदी मन असन तो आम्ही साग भाजी चो कमानी करूं से अरण फसल चो भले कमानी करूं से अंतर गोटोक फायदा बीती और कमानी आए होन कमानी आए फूल चो कमानी। आजी मैं तुमके गुलाब फूल ने बल बपू बीती खत भात जिनिस चो गोट के सांगे से। गुलाब फूल ने नत्रजन के अमोनियम सल्फेट ले देतो रहा है। ये खत चुनाव है अमोनियम सल्फेट। ये खत बूटा चो खंदा आरु पाना चो बाढ़ती काजे काम देवाय और जसन इस्फूर चो कमिया से बल्ले इस्फूर के सिंगल सुपर फास्फेट ले देतो राय। ये बूटा चो जड़ बल्ले बूंद चो काम एवाय और फूल आगर हो एचो काजे काम देवाय। आरु जोन भूई ने पोटास कम रहे से होता सल्फेट आप पोटास ये खत के देतो राय। एचोले काय होए दे कि गुलाब फूल झपके फूटे दे आरु बीमारी ले भले बाचुन रह दे। और बल बपू बीती जिनिस मन दाना बीती नहले घोरलो सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण माइक्रो न्यूट्रिएंट एके माटी ने मिसाउन नहले पाना ने छिचुन भले देउक सकास। एबे जित्रो बानी मन की मैं सांगले ए मन ने कोनी बले गोटो कम होलो ने गुलाब फूल ने फूल फूटतोर कम होन जाए से नहले बूटा के रोग बले होन जाए से। काय बानी कम होले कसन बाना चीना दखा दे से एके बले मैं सागे से। नत्रजन नत्रजन कम होलो ने गुलाब चो पाना मन नानी नानी होन जासोत आरु हृदय महा दखा देसोत। ये पाना मन बूटा ले नी घसरोत आरु होता हुन पाना मन ने लाल रंग चो बनना चीना महा दखा देवात। इस्फूर इस्फूर कम होलो ने गुलाब चो पाना मन बूटाले झड़ून जासोत। खंदा मन कमजोर होऊन जवात और बूंद बले नगत नी बसे। पोटास पोटास कम होलो ने पाना चो रेटे रेटे भूरा बले धमस्या महा दखा देवाय आरु पाना डसलो असन दखा देवाय। मैंगनीज मैंगनीज नी रलो ने पाना चो ऊपरे मुंडी ने सेमी रंग्या आरु मंजी ने हरदया दखा दे से। लोहा ये कम होलो ने नुआ पाना मन चो मुंडी मन सेमी रंग्या आरु मंजी भाग हरदया होन जाए से। बोरान बोरान कम होलो ने नुआ बूटा मंच बाढ़ती ने फरक पड़े से बाढ़ती थेबुन जाए से। दादा दीदी मन अदाय जाना कार्बनिक खत बनातो वाट। ये खत प्राकृतिक खत आए आरु गुलाब फूल चो फसल काजे खूबे लाभकारी बले आए। ये खत ने जमक बल्ले सड़लो गल्लो पाना मन जूना बूटा मन गोबर आरु कचरा लागे से। ये खत के आउर अगर गुणकारी बना तो राय यथा तेल आरु जाड़ा बिचा चो खली के बले मिसाऊ सकास। ये चोले नत्रजन आगर मिरे से ईश्वर काजे यथा मरलो गाय बैला चो हाड़ा चो चूरन बले मिसाऊ सकास। असन करुन बनालो कार्बनिक खत गुलाब फूल कमानी काजे खूबे नगत रहे से। भूई ने आमी रोजे बरक फसल धरू से फसल धरतो के होता कार्बनिक जिनिस मन कम होन जाए से। यही लागून होता कार्बनिक खत ऊपरे ले देउक लागे से। असन दिलो ने बूटा के सप्पाय बाटले फायदा मिरे से। दादा दीदी मन ये तो रहे गुलाब ने खत भात चो वाट। ये हिसाब ने तुम्हें कमानी करुक सकास और गुलाब फूल चो आगर ले आगर कमानी करुन खूबे लाभ बले कमाउ सकास।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में सुनिए डोकरा देव पाड़। वादक कलाकार हैं पाकलू और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डोकरा देवपाड़, वादक कलाकार थे पाकलू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सुबह 7:05 समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। इसमें आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। वार्ताकार होंगे प्रवीण सिंह और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे

विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम लोकमंजरी में। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटावेनार में होगा ध्रुवी गीत, कलाकार होंगे चमरूराम बघेल और साथी। प्रसारण समय सुबह 9 बजे। एक ही फिल्म से 9:30 पर फिल्म होगी वो कौन थी। सुबह 10 बजे गुलशन कार्यक्रम में सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दम में ध्रुवी गीत सुना जा सकेगा सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे दियारू और साथी। एक ही कलाकार 11 बजे। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता 11:30 पर। दोपहर 12 बजे होगा संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट गोंडी बोली में, और यही कार्यक्रम दोपहर 2 बजे होगा छत्तीसगढ़ी में, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दोपहर 12:15 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार होगा दोपहर 12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम श्रोता सुमन दोपहर 1:10 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर शाम 4 बजे, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5 बजे होगा 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर हल्बी लोकगीत सुना जा सकेगा। कलाकार होंगे लखेश्वर खुदराम और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 8 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम डांडामाली में आपको सुनवाएंगे ध्रुवी गीत, कलाकार होंगे दशमी और साथी। पीलामन का जय गोट, ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर, जो केंद्रित होगा सावित्री बाई फूले पर। प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। 9:15 पर ग्राम पंचायत की विकास गाथा के अंतर्गत होगी वार्ता। विषय होगा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। वार्ता होंगे बलवीर सिंह कच्छ। घुमकली, इस कार्यक्रम में सुनिएगा नाट गीत, कलाकार होंगे कमलोचन और साथी। प्रसारण समय रात 9:30। रात 10 बजे होगा गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब समाचार होंगे संस्कृत और हिंदी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इण्डिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन्नवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदनन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24,000,000 अथ च 25,000,000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

एक और सुहावनी सी सुबह में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र मर्सी स्वर्णा। स्वीकारे मेरा नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। आज आपके लिए है वार्ता और मधुर गीतों की मधुरिमा।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह के इस खूबसूरत ख्याल के साथ। तूफान को आना है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है। परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी हमारी आपकी हम सब की कहानी ही तो है। बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। श्रोताओं, खेल इस बात का संकेत है कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित, पोषित और अपनापन महसूस करते हैं और कठिन परिस्थितियों से भी जूझने की क्षमता रखते हैं। ये कथन है यूनिसेफ की। खेल असीम आनंद की अनुभूति, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि का एक अनूठा संगम है। यह हमें न केवल तनाव से मुक्त करता है बल्कि एकाग्रता, स्फूर्ति और सामाजिक जुड़ाव का भी जरिया है। आज खेल की बातें इसलिए क्योंकि आज के दिन यानी 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल को संरक्षित करने और प्राथमिकता देने का प्रयास है ताकि हमारे बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर सके और अपनी क्षमता का विकास कर सके। खेल मनोरंजन से बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे यह साझा जुनून सामुदायिक भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। खेल के अवसरों को सीमित करना बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। शैक्षिक परिवेश में खेल आधारित शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा कारगर और सफल होती है। बच्चों को सिखाने का एक प्रभावी तरीका माना गया है। खेल सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक और प्रासंगिक करने में सहायक होता है। इसके अलावा खेल को सहिष्णुता, लचीलापन को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश और संघर्ष निवारण में सकारात्मक प्रभाव डालता है। खेल को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 31 के तहत खेल को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर खेल के महत्व को बढ़ाने और एकजुटता का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान समय में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है ताकि बच्चे मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि ऑनलाइन की दुनिया से निकलकर अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। और अभिभावकों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इस दिशा में वे एक अच्छा निर्णय ले सके। श्रोताओं, खेल मुख्य रूप से वर्तमान में जीने की एक कला है। जब आप खेल के मैदान में होते हैं, अनुभव

किया होगा। सारी बातें भूलकर हम सुखद क्षणों को जीते हैं और यही मानव जीवन की एक नियमों में से भी एक है। वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। श्रोताओं, यदि हम बचपन बचाने में कामयाब होंगे तो हमारा भविष्य और हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित और उज्जवल होगा। सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल।
2: कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में आइए अब सुने वार्ता, अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। वार्ताकार हैं प्रवीण सिंह।
3: सभी श्रोतागणों को प्रवीण सिंह का प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। आज के समय में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है, नौकरी करना एक विकल्प है, लेकिन अपना व्यवसाय शुरू करना आपको आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मसंतुष्टि और समाज में पहचान दिला सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ नए नए अवसर उभर रहे हैं, व्यवसाय शुरू करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अपना व्यवसाय हम कैसे शुरू करें, इसी विषय को हम विस्तार से समझेंगे। अपना व्यवसाय स्थापित करना एक रोमांचक लेकिन जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सही योजना, व्यापक शोध, कानूनी अनुपालन, वित्तीय प्रबंधन और प्रभावी मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। यह मार्गदर्शन आपको व्यवसाय स्थापित करने के हर पहलू पर विस्तृत जानकारी देगा, जिससे आप ठोस समझ विकसित कर सकेंगे। चरण दर चरण मार्गदर्शन के साथ यह मार्गदर्शिका आपको उद्यमशीलता के सफर में सफलता प्रदान करने में मदद करेगा। इसे हम तीन चरणों में समझेंगे। सबसे पहले भाग एक में व्यवसाय कैसे स्थापित करें, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, उसमें प्रथम चरण अपना बिजनेस आइडिया पहचानें और परखें। सभी सफल व्यवसायों की शुरुआत एक मजबूत आइडिया से होती है। अपना आइडिया चुनते समय इन बातों पर ध्यान दें, अपने पैशन और कौशल की पहचान करें, वह क्या काम है जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, आपके पास कौन कौन से विशेष कौशल हैं, अनुभव या ज्ञान हैं जो बाजार में मूल्य बना सकते हैं, क्या आपका आइडिया आपके जीवन शैली और लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बनाता है। बाजार में मांग का विश्लेषण, यह जांचें कि आपके उत्पाद या सेवा की वास्तव में मांग है अथवा नहीं, क्या लोग इस समस्या का समाधान खोज रहे हैं जो आप हल कर सकते हैं, क्या मौजूदा समाधान पर्याप्त हैं या आप बेहतर प्रदान कर सकते हैं। यूनिक्स फैक्टर अनन्यता तय करें, यह निर्धारित करें कि आपका व्यवसाय प्रतिस्पर्धियों से क्या अलग होगा, आपकी अद्वितीय बिक्री क्या होगी, जिसे हम इंग्लिश में USP भी कहते हैं, क्या आप कीमत, बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सेवा या नवाचार के माध्यम से अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं तो क्या आप सस्ते दामों, ट्रेंडी डिज़ाइन या व्यक्तिगत शैली सलाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो क्या आप राजस्थानी व्यंजनों, विशेष आहार जैसे वेगन या ग्लूटेन फ्री या तेज़ डिलीवरी पर फोकस करेंगे। चरण दो, विस्तृत बाजार शोध या मार्केटिंग रिसर्च। बाजार शोध आपके व्यवसाय की सफलता की नींव है। यह चरण आपको जोखिम कम करने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। लक्ष्य की पहचान, अपनी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आयु, लिंग, आय स्तर, स्थान, शौक, क्या आप बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर पर ध्यान केंद्रित है, ग्राहक कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं। प्रतियोगी विश्लेषण, आपके क्षेत्र में कौन से प्रतियोगी मौजूद हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, उनकी कीमत, गुणवत्ता, मार्केटिंग रणनीति और ग्राहक सेवा कैसी है। गूगल, सोशल मीडिया और इंडोर के स्थानीय बाजारों में खोज करें। बाजार का आकार और संभावनाएं, आपके बाजार का कुल आकार क्या है, क्या बाजार बढ़ रहा है, स्थिर है या फिर घट रहा है, प्रवेश की आसानी और बाजार के संभावित आकार का मूल्यांकन करें, क्या

0: नियामक बाधाएं या उच्च प्रतिस्पर्धा है। मांग और आपूर्ति विश्लेषण, वर्तमान में लोग आपका उत्पाद सेवा खरीद रहे हैं, क्या आपातकालीन स्टॉक या आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्या है। मौसमी प्रभावों का विश्लेषण करें, जैसे त्योहारों में बिक्री बढ़ना। शोध विधियां, प्राथमिक शोध सर्वेक्षण, इंटरव्यू, फोकस समूह, द्वितीय शोध, इंटरनेट, सरकारी आंकड़े, उद्योग रिपोर्ट्स, कागजी सारांश, सैम्पलिंग, अपने क्षेत्र में 50 से 100 लोगों से प्रश्न पूछें। चरण 3, ठोस व्यवसाय योजना बनाएं। एक विस्तृत बिजनेस प्लान आपके व्यवसाय का रोड मैप है। यह आपको निवेश आकर्षित करने, लोन लेने और व्यवसाय को निर्देश देने में मदद करता है। व्यवसाय योजना के मुख्य घटक, पहला है कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी, व्यवसाय का नाम, उद्देश्य और मिशन, आपका आइडिया और क्यों यह सफल होगा, मुख्य लक्षण और विजन। दूसरा है कंपनी विवरण, कंपनी का कानूनी ढांचा, एकल स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि कोई हो तो, स्थान और संचालन का क्षेत्र। तीसरा है उत्पाद या सेवा विवरण, आप क्या बेच रहे हैं, उत्पाद अथवा सेवा की विशेषताएं और लाभ, उत्पादन प्रक्रिया या सेवा प्रदान करने का तरीका, भविष्य में नए उत्पादों की योजना। चौथा है बाजार विश्लेषण, बाजार का आकार और वृद्धि दर, लक्ष्य ग्राहक और उनकी आवश्यकताएं, प्रतियोगी विश्लेषण, ताकत कमजोरियां, कीमत, मार्केट। स्ट्रेटजी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। पांचवा, मार्केटिंग और बिक्री रणनीति, मूल्य निर्धारण रणनीति, प्रमोशन और विज्ञापन की योजना, बिक्री चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ग्राहक अधिग्रहण और रिटेंशन रणनीति। छठवां है संचालन योजनाएं, दैनिक संचालन कैसे होगा, आवश्यक उपकरण, मशीनरी और तकनीकी, आपूर्ति श्रृंखलाएं और स्टॉक प्रबंधन, स्थान, किराया और बुनियादी ढांचाएं। सातवां है प्रबंधन और संगठन, टीम की संरचना और भूमिकाएं, प्रमुख कर्मचारी और उनके अनुभव, यदि साझेदारी है तो साझेदारों का विवरण, भविष्य की भर्ती योजनाएं। आठवां है वित्तीय योजनाएं, प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता, अनुमानित आय और व्यय लगभग 6 महीने से 2 वर्षों तक के, ब्रेक इवन विश्लेषण, आप कब आप मुनाफा कमाएंगे, वित्तीय भविष्यवाणियां जिन्हें हम इनकम टैक्स स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो के नाम से भी जानते हैं। धन जुटाने की योजनाएं। नौवां है जोखिम विश्लेषण, संभावित जोखिम और चुनौतियां, जोखिमों को कम करने की रणनीतियां, आपातकालीन योजनाएं। आगे है व्यावसायिक योजनाएं लिखने के टिप्स, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें, वास्तविक और मापने योग्य लक्ष्य तय करें, डेटा और तथ्यों का समर्थन करें, योजना को लचीला बनाएं क्योंकि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, नियमित रूप से योजना को अपडेट करें। भाग 2, कानूनी और प्रशासनिक तैयारी, व्यवसाय का कानूनी ढांचा चुनें। भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई कानूनी संरचनाएं उपलब्ध हैं, प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। व्यवसाय संरचनाओं की तुलना, संरचना विशेषता, फायदे नुकसान, उपयुक्त जो लोग। इसमें पहला है एकल स्वामित्व, सोलो प्रोप्राइटरीशिप, एक व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व, इसमें सरल पंजीकरण, कम लागत और पूर्ण नियंत्रण होता है। निर्बाध अनिर्बाध दायित्व पूंजी सीमित, छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप, गृह उद्योग में ये काम आ सकती है। साझेदारी या पार्टनरशिप, इसमें दो या अधिक से व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, पूंजी में वृद्धि, कौशल विविधता, साझा जोखिम, साझेदारी विवाद, अनिर्बाध दायित्व, 2-3 साझेदारों वाले व्यवसाय, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निगम, शेयरधारक, सीमित दायित्व, निवेशक, आकर्षित प्रतिष्ठा, जटिल पंजीकरण, उच्च अनुपालन, टेक्निकल, स्केलेबल स्टार्टअप, निवेशक चाहने वाले, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP साझेदारी प्लस निगम का मिश्रण, सीमित दायित्व, लचीलापन, कम अनुपालन, निवेश कम आकर्षित, प्रोफेशनल सेवाएं, कंसल्टेंसी एजेंसीज इसके लिए बेस्ट है। वन मैन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, सीमित दायित्व, एकल स्वामित्व, पूंजी सीमित, अनुपालन, एकल उद्यमी जो दायित्व सुरक्षा चाहते हैं। निर्णय लेने के मापदंड, क्या आपको सीमित दायित्व चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छा है प्राइवेट लिमिटेड या LLP हम चुने। क्या आप निवेश चाहते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया है प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप सरलता चाहते हैं, तो इसके लिए एकल स्वामित्व या साझेदारी के ऑप्शन उपयुक्त हो सकते हैं। क्या आपको कर लाभ चाहिए, इसके लिए हम LLP या एकल स्वामित्व चुन सकते हैं। व्यवसाय का आकार, आकार और लक्ष्य क्या है महत्वपूर्ण। एकल स्वामित्व में आपके व्यक्तिगत संपत्ति पर भी जोखिम होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में यह केवल कंपनी की पूंजी जोखिम में होती है। चरण 5, व्यवसाय पंजीकृत करें और लाइसेंस प्राप्त करें। कानूनी पंजीकरण व्यवसाय के लिए अनिवार्य है। यह आपको बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने, सरकारी स्कीमों का लाभ लेने की अनुमति देता है। आवश्यक पंजीकरण और लाइसेंस, पहला है कंपनी पंजीकरण। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ कंपनी पंजीकृत करें। एकल स्वामित्व के लिए स्थानीय मंडी समिति या नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस, साझेदारी के लिए साझेदार वैकल्पिक लेकिन अनुशासित, प्राइवेट लिमिटेड के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, नाम रिजर्वार इनकॉर्पोरेशन। दूसरा है GST पंजीकरण। GST पंजीकरण अनिवार्य है यदि आपका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपए उत्पादन अथवा 20 लाख रुपए सेवा से अधिक है तो। कुछ राज्यों में यह सीमा, खासतौर पर हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में, 10 लाख से कम में भी आवश्यक है। ऑनलाइन GST पंजीकरण हम https://gst.gov.in पर भी कर सकते हैं। GST कीटनाशक 3 दिन में मिल जाता है इसका लाइसेंस। MSME पंजीकरण, या हम इसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, छोटे व्यवसायियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। सरकारी टेंडर, लोन सब्सिडाइज, बिजली में छूट आदि के लिए फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम इसको https://udyamregistration.gov.in से कर सकते हैं। यह हमें 1 से 2 दिन में प्राप्त हो जाता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण, अपने ब्रांड नाम, लोगो और टैगलाइन की सुरक्षा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन। 6 से 12 महीने लगते हैं और इसके लिए हमें लगभग 4,500 से 9,000 रुपए की लागत लगती है। ट्रेड लाइसेंस के लिए स्थानीय नगर निगम या मंडी समिति से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय के प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है। वार्षिक नवीकरण इसमें आवश्यक होता है। अन्य विशिष्ट लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस, ये मुख्य रूप से हमें फूड बिजनेस के लिए जरूरी होता है। ब्यूटी सैलून लाइसेंस ब्यूटी उद्योग के लिए, हेल्थ केयर लाइसेंस मेडिकल उद्योग के लिए, कंस्ट्रक्शन लाइसेंस निर्माण उद्योग के लिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों के लिए। कर पहचान संख्या पैन कार्ड कंपनी या व्यक्तिगत अनिवार्य। 10 टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर यदि TDS हम काटते हैं तब। 8वां है बैंक अकाउंट, व्यवसाय का करंट अकाउंट खोलें, व्यक्तिगत और व्यवसायिक खातों को अलग रखें। कई बैंक स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज देते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, अपना व्यवसाय कैसे शुरू करें। वार्ताकार थे प्रवीण सिंह। श्रोताओं, वार्ता में निर्देशित बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी अपना व्यवसाय शुरू कर जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: श्रोताओं, इन दिनों आपने समाचार पत्रों, अखबारों या किसी से अल नीनो शब्द अवश्य ही सुना होगा। ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक लेकिन असामान्य मौसमी घटना है, जो 2 से लेकर 7 साल के अंतराल में घटित होता है। अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अत्यधिक गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में जमा हो जाता है, तो हवा के दबाव और दिशा में बड़ा बदलाव आता है। इससे वैश्विक जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में अल नीनो का प्रभाव अधिकतर नकारात्मक होता है। वातावरण में नमी की कमी, चिलचिलाती गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ जाता है। कुछ विधियों को अपनाकर, जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक और वर्षा जल संचयन कर, हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं। हम सभी ने इस वर्ष अधिकतम तापमान को महसूस किया है। ये जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक अल नीनो का प्रभाव भी है। श्रोताओं, जीवन की परिस्थिति एक सी कभी नहीं होती। कभी कड़कड़ाती ठंड तो कभी चिलचिलाती धूप, मौसम में बदलाव होते रहते हैं, तो क्यों ना हम हर मौसम का आनंद ले गीत संगीत के साथ।

0: कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में आगे है मधुरिमा, उससे पहले आइए सुने ये संदेश।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: और अब पेश है मधुरिमा।

सांसें चलती है तो तुम्हारे नाम से, और रुक जाए तो भी तुम्हारे नाम पर। प्यार का हिसाब कहाँ रख पाते हैं, ये तो बेपनाह होता है, बेहिसाब होता है। तुम पास हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो हम भी नहीं। समंदर की गहराई नापी नहीं जाती, आसमान की ऊंचाई की कोई थाह नहीं। वैसे ही तुम्हारे बिना जीने का तस्वुर भी हमसे सोचा नहीं जाता। शब्द कम पड़ जाते हैं, जज्बात बयां नहीं होते। बस इतना समझ लो, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं।

तुम्हारे प्यार में दिल महक सा जाता है, ये एहसास पन्नों पर खुद ही उतर आता है। जरूरी तो नहीं कि हर पल तुम सामने ही रहो, ख्यालों में मिलना भी बड़ा सुकून दे जाता है। बिना छुए तुम्हें तुम्हारा हो जाना ही मोहब्बत है, ये रूहानी रिश्ता ही मेरी सबसे बड़ी इबादत है।

प्यार वो एहसास है जिसमें किसी की मौजूदगी से दिल को सुकून मिलता है और उसकी गैर हाजिरी में भी उसका एहसास साथ रहता है। प्रेम में खूबसूरती चेहरे की नहीं भावनाओं की होती है। ये वो रिश्ता है जो शब्दों से नहीं खामोशियों में भी समझा जाता है। कभी मुस्कान बनकर कभी आंसू बनकर ये दिल के हर कोने को छू जाता है। सबसे गहरी बात, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस समय के साथ और भी गहरा और भी सच्चा हो जाता है।

किताबों में कहाँ मिलते हैं वो जज्बात मोहब्बत के, किताबों में कहाँ मिलते हैं वो जज्बात मोहब्बत के, जो अक्सर तुम्हारी एक खामोश नजर कह जाती है। जिंदगी तो बस एक गुजरा हुआ कल थी, अब तक तुमसे मिलकर लगा कि जीने की अब वजह मिली है।

ये थी आज की मधुरिमा। श्रोताओं, जीवन की हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखें, साहस न छोड़ें, कामयाबी अवश्य मिलेगी। आपके शुभ दिवस की कामना के साथ मुझे यानी मर्सी स्वर्णा को कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
3: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
6: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
5: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
7: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
5: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
9: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
3: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
10: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा।

0: कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics.

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम लोक मंजिरी में सुनिए विभिन्न बोलियों में लोकगीत। पहले सुनिए छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं संत मसीदास और साथी।

अभी आप सुन रहे थे संत मसीदास का लिखा और शेख हुसैन और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी गीत। अब सुनिए भत्री गीत, कलाकार हैं लखमू राम और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लखमुराम और साथियों के गाए भतरी गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। और अब सुनिए हल्बी गीत। कलाकार हैं शिवराम नाग और साथी।

कार्यक्रम लोकमंजरी में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटावेनार में सुनिए चमरू राम और साथियों के गाए ध्रुवी गीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम पाटाविनार में आप सुन रहे थे ध्रुवी गीत। कलाकार थे चमरू राम बघेल और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: अरे वाह, लेजेंड की बैट,
2: इससे तो मैं खेलूंगा।
3: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
4: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
3: अरे यार
4: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वो कौन थी।

वो कौन थी सन 1964 में रिलीज हुई राज खोसला की निर्देशित एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी। उत्कृष्ट ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी, सस्पेंस, कथानक शामिल फिल्म है। आइए सुने इस फिल्म का एक और गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वो कौन थी। अभिनेत्री साधना की रहस्यमयी और ग्लैमरस अंदाज इस फिल्म का मुख्य आकर्षण था। सफेद साड़ी में उनका किरदार दर्शकों के मन में एक सम्मोहक डर पैदा करता है और उनकी हेयर स्टाइल को काफी पसंद किया गया, जो आज भी साधना कट के नाम से जानी जाती है। फिल्म में अभिनेत्री साधना ने दोहरी भूमिका निभाई। शांत और ठंडी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर अलग ही रोमांच पैदा करती हुई नजर आई, दूसरी तरफ तेज तर्रार किरदार। मनोज कुमार और परवीन चौधरी डॉक्टर की भूमिका और के एन सिंह खलनायक की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वो कौन थी। फिल्म की पटकथा इतनी मजबूत बुनी गई है कि दर्शक पूरी फिल्म के दौरान यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वह खूबसूरत लड़की आखिरकार कौन है, एक भूत या कोई साजिश का हिस्सा। निर्देशक राज खोसला की रहस्यमयी थ्रिलर पहली फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड में कई नई ऊंचाइयों को छुआ। फिल्म में छाया यानी शेडो और लाइटिंग का सटीक उपयोग किया गया जो उसके डरावने और रहस्यमयी माहौल को जीवंत करता है। आइए सुने एक ऐसा ही गीत।

वो कौन थी फिल्म के सभी गीत कर्णप्रिय हैं। मदन मोहन का मधुर संगीत कर्ण पटल पर पड़ते ही एक सुखद एहसास दिलाती है। फिल्म के गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे मधुर गीतों में शुमार है। लता मंगेशकर के गाए गीत लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम रिमझिम आज भी लोगों के जुबां पर है और इतने लोकप्रिय कि इसका ख्याल दिल से उतरता ही नहीं, गीत गुनगुनाने को आतुर हो उठते हैं। सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

0: फिल्म वो कौन थी बेहतरीन संगीत और कहानी के लिए जानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ छायांकन सिनेमेटोग्राफर के लिए रामचंद्र ए नायक को फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। आज हम आपको सुनवा रहे थे वो कौन थी फिल्म के नगमे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष जनजाति समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास के लिए स्वर्ण काल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या पर निर्णायक नियंत्रण मिला है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, कनेक्टिविटी और आजीविका के अवसरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों और प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पुनर्संरचना शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के लिए की गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहुंच सकता है। इस बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वो आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी और स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अधिकारियों के तबादले किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम गुलशन। आज इस कार्यक्रम में सुनिए शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। आज के गुलशन के सभी गीत सजे हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। कार्यक्रम का पहला गीत आम्रपाली फिल्म से, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का। ये गीत राग देशकार में निबद्ध है।

अगला गीत गाइड फिल्म से, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत एसडी बर्मन का है। ये गीत राग तरंग पर

गुलशन कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। और अब सुनिए आनंद बख्शी की गीत रचना संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। ये गीत राग झिंझोटी में निबद्ध है।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। और अब सुनिए राग भैरवी में निबद्ध गीत अनुराग फिल्म से, बोल आनंद बख्शी के, संगीत एसडी बर्मन का है।

और अब सुनिए अर्पण फिल्म का नगमा। ये गीत राग पीलू और राज खमाज में निबद्ध है। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुने राग कलावती में निबद्ध खिलौना फिल्म की कव्वाली। बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। आज के सभी गीत सजे थे लता मंगेशकर की मधुर आवाज में। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सीखा है।
1: अरे वाह, लेजेंड की बैट,
2: इससे तो मैं खेलूंगा।
3: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
0: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
3: अरे यार
0: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाएं रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 to 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 to 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
6: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुरदुम में सुनिए ध्रुवीय गीत। कलाकार हैं दियारू और साथी।

अभी आप सुन रहे थे बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें आज आप सुन रहे थे दियारू और साथियों का गाया ध्रुवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सारिका ठाकुर अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत।

श्रद्धा, ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बचपन में ही अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। नाम है जिनका सारिका ठाकुर। जन्म हुआ 5 दिसंबर सन 1962 में। यहाँ बहुत ही छोटी ही थी जब इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए और इनकी माँ कमल ठाकुर ने इनका दाखिला करवा दिया फिल्मों में। इनकी माँ कमल ठाकुर एक बहुत ही कट्टर थी जो कि अपनी बेटी सारिका को फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया, जिस वजह से मात्र 4 या 5 वर्ष की उम्र से ही सारिका अपने परिवार का बोझ उठाने लगी। तो आइए सुनते हैं सारिका अभिनीत फिल्म छोटी बहू का ये गीत।

श्रद्धा सारिका के अभिनय की पढ़ाई हुई मुंबई के फिल्म स्टूडियो में, पर ये कभी स्कूल ना जा पाई। हालांकि इनकी मां ने प्राइवेट ट्यूटर जरूर रखा था, पर फिर भी स्कूली शिक्षा सारिका को ना मिल सकी। सारिका का बचपन बड़ा ही त्रासदी भरा रहा। छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे काफी डांट पड़ती। ये बड़ी हैरान रहती, लेकिन तब भी वो अपना काम एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में

करती रही। काम तो अच्छा करती ही थी, फिल्म स्टूडियो में दुनिया इनकी तारीफ करती ही थी और फिल्मों के दर्शक भी तारीफों के पुल बांधा करते थे।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: दीदी हाँ? ये देखो सना से
3: जन्मदिन के बधाई भाई।
2: देखो आहा मैं तो मन तो रंग
3: हम दिया घेन तो
2: मैं जाने आया मांतर खर्चा कर तो बोले यही उम्र है सत्य
4: बच्चा तो बोले यही उम्र
5: मैं जाने बाबा बचत करा सही ठान ने जमा करा पैसा चु ब्याज मिरे दे जेके फेर जमा कर ले ब्याज मिरते रहते
2: मैं जाने ना
5: आरबीआई बोले से
6: नंगत करा मूर लेन देन बेरा रहा चतुर।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
8: आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री सारिका ठाकुर अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। श्रोताओं, सारिका ने बचपन से ही बहुत से ही अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया, चाहे वो मीना कुमारी हो या फिर महानिर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ये बात और रही कि हरि भाई यानी संजीव कुमार के साथ सारिका की जोड़ी खूब चली। कभी ये उनकी बेटी बनकर आई तो कभी सहेली, कभी बीबी और कभी कभार उनकी हीरोइन का रोल निभाते हुए भी हमें नजर आई।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही कलाकार संपन्न होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे सारिका अभिनीत फिल्मों के कुछ गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। इसमें आज सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: चंचल का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जाँच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जाँच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
6: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
5: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्यामराज के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है आदेश श्रीवास्तव ने, स्वर दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में आइए सुनते हैं अजीज कैसी की लिखी गज़ल। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का है।

0: इस कार्यक्रम की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता संपन्न होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों गीत और गजल। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर के
1: रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। उन्होंने UNDP को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी जमीन में दबा खजाना मिलने की कहानी सुनाकर नकली सोने के बिस्किट और सिक्के असली बताकर सस्ते दाम में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, 1 नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए हैं। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन संभागों के कुछ जिलों में तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। केशकाल घाट के 7वें मोड़ पर

0: एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण केशकाल घाट पर मेगा जाम लग गया है। घाट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आवागमन प्रभावित हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेलवे स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल बिलासपुर में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
8: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाएं रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 बजे तक, तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

0: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान्त प्रस्तुति दीदी के गोट केंद्र नोड कुंडे मेहतारी दीदी भैया अश्रोता संगवारी किन चंदा
1: असुरुज ताकेट
2: जय बिहान।
0: सूरज दीदी बस ओंड मिनट
1: ए बात की मुतिन निमरी दीदी लोर इन संग वेतन विरसी मोबाइल तक इचोर बात जरूरी में दे
0: नना दीदी लोर अब तो की मुत
1: अद बाले
0: अद इलेरी ना पोए ना मेयर ना एरुपिक में दे।

0: सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ ला ओंड पे देरते बड़े मास ओंड समान गुणवत्ता भरोसामंद बाजार उमके ग्रामीण शिल्पकार दीदी लोरिन लाए ओंड स्थायी आजीविका तवादा इंजे छत्तीसगढ़ ला ब्रांड ता अंतर्गत उत्पादी नवमानद और माध्यमी लेकेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बाजार ट्रेंडिंग चैनली और गिफ्टिंग सेगमेंट माध्यम ते सफलता ते की मुतो
1: और पुत्ती चंदा
0: बाता दीदी
1: बिहान ता अंतर्गत दीदी लोरा मुत्ते उद्यमी ना पार्ता उत्पाद ता ब्रांडिंग पैकेजिंग विपणन और मॉल तक पेरसना दिन प्रसिद्धि लाए ग्रोथ सेंटर ता स्थापना कित्तोर।
0: हाँ,
1: इंजे बस्तर और सरगुजा तक रेंट ग्रोथ सेंटर चला की मुतोर।
0: ग्रोथ सेंटर ना सुचारू रूप ते संचालन तलाय उन त्रिपक्षीय अनुबंध किंतत मिंदे रेंडासो ग्रोथ सेंटरी नगा 10-10 महिला उद्यमी बूतो की मुता यू ग्रोथ सेंटरी ना माध्यम ते उत्पादी ना ब्रांडिंग पैकेजिंग आर मार्केटिंग तगा सहयोग की मुता यू उत्पादी ना ब्रांडिंग पैकेजिंग आर मार्केटिंग तगा PWC संस्था ताके तकनीकी मदद वेंड इनोर।
1: बस्तर तक ग्रोथ सेंटर तक कमका मिडिया धनिया तिकुर इताता रोटी बेल मेटल मिलेट कुकीज लेके तो गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद तो ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग की मुतोर।
0: ई लेकिन सरगुजा तक ग्रोथ सेंटर तक सरसुंतानी जीरा फूल नुका विष्णु भोग नुका मोरिंगा पाउडर शहद कोसा उत्पाद लेके तो गुणवत्ता पूर्ण उत्पादी ना ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मुतोर। इंजे 16 उत्पादी ना ब्रांडिंग और मार्केटिंग छत्तीसगढ़ ता अंतर्गत की मुतोर। उबाय वायना दिनामते 25 उत्पादी ना ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग छत्तीसगढ़ ता अंतर्गत आता। वराट समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर ता अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम श्रीगढ़ता कोषा अध्यक्ष श्रीमती हेमंती रजवाड़े तीना पूंदाकाल की और ग्रोथ सेंटर ता संचालन की मुता।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
4: दीदी तो अपन बारे में बताते।
3: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला, फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल जीरा फूल चावल मुरेंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। ग्रोथ सेंटर में सरसों तेल हो गया, मुरेंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णु भोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का छत्तीसगढ़ ब्रांड है जिसमें उसका GST बिल है, FSSAI लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ ब्रांड में तो कर पैसा ज्यादा मिलते। अमेजोन फ्लिपकार्ट उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है, छत्तीसगढ़ ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला, मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहान का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: वाह दीदी, नेका नेला लागता की मीवा उद्देश्य केवल उत्पादवा मनाइयो बल्कि नाटे नव मुत्ते किन आर्थिक रूप से बरकास पाड़ना और स्थानीय उत्पादी किन राष्ट्रीय स्तर तक एवितिन मिंदे। पुत्तिन सुरोज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ता अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट ता अंतर्गत छत्तीसगढ़ ब्रांड ता ट्रेडमार्क पंजीयन की नंद मिलदे इलेते महिला नेतृत्व बीति ग्रामीण उद्यमी लय अधोसंरचना विकास बाजार तक योदाना आर उपयोग ब्रांडिंग पहचान आर तकनीकी प्रशासनिक आर प्रबंधकीय मदद उपलब्ध कीना संभव आय मुनता। वराट मावा दीदी श्रीमती सुनीता ग्राम चिलकुटी जिला बस्तर संघ कार्यकाल।
2: जय बिहान दीदी।
5: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
2: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
5: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी छत्तीसगढ़ ब्रांड अमेजोन फ्लिपकार्ट और इस रस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई कोई ऑर्डर करते हैं
6: हाँ हाँ।
5: तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना
6: हाँ।
5: तो मेरे ही मोबाइल में ओटीपी आता है
6: अच्छा।
5: हम ओटीपी को एक वेबसाइट है उसमें जाके ओटीपी नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ये ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आया है फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
6: पहले आप बिहान से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा लगता है?
5: मैम पहले बिहान में जुड़ी थी तो खाली समूह में ही थी मैं
6: हाँ।
5: और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ
6: हाँ।
5: और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी कि अच्छा अच्छा चीजें जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी
6: हाँ।
5: मैं फर्स्ट कवाई बोलने से
6: हाँ।
5: यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी हम लोगों का बैचलर मीट हुआ उसमें आई थी तब मैं रायपुर आई थी। आपको और एक बात बता रही हूँ जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था और ना ही पैकेजिंग ठीक थी और उनका पसाई नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदी अमन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छे ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ छत्तीस कला ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट स्टोर में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
6: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
5: मैम बदलाव तो बहुत आया है। मैं ही देख लो मैं पहले घर पे ही रहती थी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी क्लस्टर में जुड़ी उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
6: और आत्मविश्वास
5: बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ही बेचें जिसे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीस कला ब्रांड के नाम पर राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
1: जमुती चंदा स्व सहायता समूह था दीदी लोर छत्तीस कला ब्रांड से जुड़े मतदान के आर्थिक रूप से सशक्त है मुता
0: और इधे कड़ी तगा रेंडासो ग्रोथ सेंटर अमेजन ता संग MOU वेंड मिंदे SHG उत्पादी किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन फ्लिपकार्ट मीसो रिलायंस स्मार्ट लेकेट वीडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक व माले भारत सरकार ताकेट अनुबद किंतन मिंदे इलेते औ बाले ग्रोथ सेंटर तीना जुड़े मास अपुना उत्पाद तीन आसानी ते वमा पर्दमुंता वराट केंजाकाल मीड श्रीमती डामिल बघेल और श्रीमती रुत बघेल दीदी बस्तर तीना।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
6: तालीम बघेल दीदी आप क्या काम करती हैं?
7: हम टिकूर उत्पाद करते हैं।
6: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
7: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे कभी ऑटो मिलता था कभी नहीं मिलता था जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में है ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
3: रूप बघेल दीदी आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीस कला ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
8: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है। आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं हमको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ उस मेरे ही समूह के दीदियाँ हैं मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियाँ हैं और मेरी छत्तीस कला ब्रांड की दीदियाँ हैं।
1: एका कसर दीदी लोरी छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पादी की पूना पहचान वेंड इमूता।
0: बिल्कुल ई विश्वास का बुनियाद मिंदे मेवा अपना रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट इग्गा हर लेंज ता दूसर लखीमवार ते पेयल 2 बजे तीना और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण पेयल 2 बजे मास 30 मिनट ते केंजा पर दीतीर। इत कार्यक्रम का योजना से संबंधित जिज्ञासा अयो के अपना टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 तगा पेयल 12:33 बजे फोन की पूछा किया पर देती।
1: इधर टोल फ्री नंबर तगा सवाल पूछा की महामाया स्व सहायता समूह साकराले भारती ध्रुव जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव तीना मोहनी बाई साहू एकता स्व सहायता समूह भैंसा पारा तीना दिनेश्वरी जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई तीना संतोषी जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह भैंसा पारा तीना दुर्गेश्वरी साहू प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया तीना लक्ष्मी सरस्वती स्व सहायता समूह खनौदा तीना मधुखरे माता सुरक्षा स्व सहायता समूह तीना देवतीन साहू मीड बोरी कारका तीना माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा तीना मोहनी प्रणीता तिवारी जय शीतला स्व सहायता समूह सुड़ी तीना तलेश साहू। पूछा कितना सवाल तीना लॉटरी टेंडिस और सवाल तीन आज तुम लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत चिनोला तीना पूछा कितना रागी लड्डू पाड़ा नुमा इदीना मार्केटिंग बाले की तुम अर 36 कला ते जोड़े माला बात की न
0: रागी लड्डू ता मार्केटिंग तले सबले मुन्ने लड्डू पाड़ा ना समय SOP ता पालन की मूड उत्पादन ता पैकेजिंग और ब्रांडिंग 36 कला ब्रांड ता अंतर्गत किलाए बिहान कर्मचारी ते संपर्क कीस ग्रोथ सेंटर ता जुड़े मास लड्डू ता मार्केटिंग किया पर दीती
1: एड़का ता सर दीदी लोरी और चुडला नारता दीदी लोरा कला मेहनत और पहचान तीना पोईस देश दुनिया एवना ईद यात्रा मिंदे महिला सशक्तिकरण ता यात्रा
0: और दीदी लोरी ईद वेसोड़ मिंदे रचनात्मक दृढ़ता और आत्मनिर्भरता ता पहचान मिंदे 36 कला ब्रांड ता
1: अपना पहचान ते सम्मान ता और तग बिहान ता संग डाका मिला किस मिले मास पेड़ सकल
0: हाँ
1: ईद प्रण ता संग बिहान ता वायनत कार्यक्रम तक दीदी लोरा जीर ता माटा पोईस वेंडे काल्याकाल अजुटाना इमुट विदा
9: जय जोहार जय बिहान।
10: अभी आप सुन रहे थे संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाजों में, रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, फिल्म है आए दिन बाहर के।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है आरडी बर्मन ने, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, फिल्म है आपकी कसम।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म आ गले लग जा का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, बोल साहिर के हैं, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: जुहार जुहार बहिन मन जुहार एची संगे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए गांव गरी दीदी बहिन मन के मैं पारो करें से जुहार। और बहिन मन तुम्ही तो जान साची आमी कार्यक्रम घर द्वार चो भीतरे कैक असन ज्ञान ध्यान जो गोट भेर वार्ता कहानी कविता और काय मजा रंग रंग जो गीत के धरुन तुम चो लगे बड़े मुंडरा ने अमराऊ से। तो बहिन मन तुम्ही तो ज्ञान साची दखा अमी जोन मेहरार मन हूँ से घर चो मुखिया हूँ से बोलो ने आम के कितरे पैसा कमा ले बोले आमचे मनुक कमाओ चाहे आमी कमाओ चाहे आमचे बेटा बेटी कमाओ चाहे आमचे सतरा सतरी कमाओ मंतर आमचो हाथ ने आमचो घर चो खर्चा और आमके काय चीज ने कितरो खर्चा करतो राय कौन बिहार ने कितरो देतो राय कौन चुका जी काय घेनतो राय और कसन कसन जगह ने कितरान पैसा खर्चा करून माती आमके आप लो बचत के बले दखतो राय। बहिन मन आमी दखा दखीने ढोंग ढांग ने लोग चो दखा दखीने आमी कपड़ा लता सिंगार बंगार और दूसरा जोन उपयोग आमचो जरूरत अनुसार नहीं हो से तेमरे बल्ला मन मन चोबरे खूबी खर्चा करूँ से मंत्र बहिन मन आम के आपलो जीवना काजे आपलो बाढ़ती काजे आमचो भविष्य ने अचानक ए तो खर्चा काजे आम के आपलो खर्चा ले आपलो आमदनी ले आम के 10-20% भाग पैसा बचत काजे सोचतो रहे जैसा आमचो जरूरत खर्चा हो से राशन पानी बिजली बिल पानी बिल और दवाई पानी जो नाम के जरूरत आसे असन चीज मन ने आम के खर्चा करून भाती आपले भविष्य ने ए तो जसन पीला मन जो पढ़ाई आए बिया टीका आए अचानक कहीं बीमार सीमार हो से तो असन समय का जे आम के आपलो खर्चा ले खिंडिक बचत करून भाती आपलो बैंक ने आरडी खाता नहाले कहीं बोले असन जमा पूंजी बनाउन भाती संगात राय जोन आमचो ए तो समय का जे काम आयो कसन बोलो ने आमचो ए तो समय ने काय दुर्घटना हो सके और काय अचानक असन खर्चा हो सके जिसो का जाम के लोग ले उधारी धर तो जरूरत नी पड़ो और जहां तक हो सके आम के आप लोग उधारी पैसा ले बाच तो रहे। बहिन मन अनावश्यक खर्चा ले कटौती कर तो रहे खरीददारी ले पहले आम के योजना बनात रहे और जसन आम के आप लोग आर्थिक संकट ले सुरक्षित बना तो काजे जो आमचो बजट ले खिंडिक आधा काम बचाउन संगावरों दे हुनी पूंजी आम के जीवन ने आगे जाउन भाती काम आए दे तो हुनी काजे आप लो खर्चा और बचत ले संतुलन बनाउन भाती आप लो परिवार चो बाढ़ती काजे गोटोक बजट ले आम के आप लो एतोबती समय ने सुरक्षित आप लोग बेटा बेटी चो बिया टीका पढ़ाई लिखाई और कहीं भले बीमार सीमार ले निपटारा कर तो काजे आम के बचत कर तो खूबी जरूरी है। तो बहिन मन ये तो आमचो घर परिवार चो गोटा है और आमी मेहरार मन ये चो कुटुक सफल भागीदारी जो काम निभाऊं से और आमी मेहरार मन जी दिमाग लगाऊं भाती ये सब चीज ने ध्यान दिलो ने आमचो घर और अधिक बाढ़ती चो बाटने जाए दे। तो बहिन मन ये तो रेली आमचो ज्ञान ध्यान चो गोट ये चो पाठे आसे आमचो कार्यक्रम भीतरे कुटुक जहाला आल ई आई के बोले सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
5: सुबिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवन इंजे जीएसटी छूट दोरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 ಸಿಸಿ ತ ಕೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ತ ಪೊರ್ರೋ 28% GST ಮತ್ತ ಅದ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ. ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತ ದೊರ್ಕಿತ.
0: हाँ तो बहन मन आमचो मुंडरानी गोटोक भेटवार्ता आसे. ए बहन मना दूध उत्पादन करतो पशुपालन बहन श्रीमती उमा मंडल अल इया एमन जी भेटवार्ता सुनु. एमन संगे भेट करला सो श्री बलबीर सिंह कच्च.
6: घरद्वार सुन तो बहन मन जसन के आमी कई कसन हुनरमंद कई न कई असन धंधा पानी करतो महिला दीदी मन संग गोट बात करूं से. तो आज भले असनी में भले ने गोरस निकरा तो धंधा दुग्ध उत्पादन धंधा बीती दीदी संगोट बात करें से तो सब ले आ गए तो छो नाव आरो गांव छो नाव सांग दे.
7: जुहार दादा.
6: जुहार.
7: मैं टेका मेटा रू है. टेका मेटा में डेरी चलाऊ है.
6: अच्छा.
7: मचो गाय बैला आसत बकरी मन आसत कुकड़ी मन आसत.
6: अच्छा.
7: सबके मैं अकेला देखभाल करू मैं.
6: अच्छा.
7: उतारू है डंडिक डंडिक घर है.
6: अच्छा. तो बल्ले ने गाय बैला कुकड़ी बकरी सब आसत बल से.
7: हाँ जी.
6: अच्छा. तो किठान असन आसत गाय मन.
7: गाय बैला टिका छोटे पीला जिला सपाई संगे 21 टन आसत.
6: अच्छा.
7: ए... बकरी मन 11 टन आसत पीला जिला संगे.
6: अच्छा.
7: 11 बकरी आसत और कुकड़ी मन से 10-12 टन.
6: अच्छा. देसी बीती है कि ये जो सरकारी बीती है कुकड़ी मन बोलू.
7: देसी चिया.
6: देसी चिया. अच्छा. तो ये भी बल्ले ना गोरस बल्ले दूध आए कितलो ठन गाय मन दे सो ताले.
7: ये भी 6 गाय दूध दे सो.
6: अच्छा.
7: गोरस मन में खूबे नहीं आए आजकल. खाना पीना नहीं आए गुनु.
6: अच्छा.
7: थोड़े कम होए सो.
6: अच्छा. तो ये कौन जर्सी गाय आए कि संदेशी.
7: देसी आए दूठन आसत जर्सी.
6: जर्सी. अच्छा. तो बल्ले ने दिन ने कितलो सन बल्ले ने गोरस वैसे जाले.
7: बियाने 8 लीटर हुआ है. सांझ के 6 लीटर.
6: अच्छा.
7: सांझ बेरा गोटक के नहीं दूए. 5 टन के दूए.
6: अच्छा. तो ये जो गोरस जो है बोले बिक्री कहाँ है से जाले.
7: ते धर्मपुरा ने घरे आनु दे.
6: अच्छा. घरे घरे
7: घरे घरे ने उन दू. सांझ बेरा चो आनु के हुआ है घरे.
6: घरे आनु के. अच्छा. तो बल्ले ने कसन हिसाब ने दे सर लीटर कसन है.
7: लीटर है 60 रुपया चले सके.
6: 60 रुपया. अच्छा. तो ये मंचो दोन चारा दाना है बोलू बल्ले ने देते रहन काय चीज के दे सा तुम.
7: दाना दे से और बुलुक जा सो तुम. अच्छा. चरा उकने सो.
6: हां.
7: चरा उन भारी आन लेने सांझ बेरा दाना देवा. और खड़ देवा.
6: अच्छा.
7: पैरा बुलुआ.
6: हां हां.
7: उनके देवा.

तो बहन मन ये आमचो गीतकुरीन बहन मन रोत गेलमनी देवी अरुंचो संगवारी मन तो दीदी मन जाते जाते आमचो मोडरानी फिर कुटुक जाते बेराचो पाड़ गीत आसे आले एके बोली सुनू फिर गीतकुरिया मन चुनाव के सांगवा

0: हाँ तो दादा दीदी मन ये गीत जो गीत कुरिया भाई मन रोहत श्री बलबीर सिंह कक्षर हुन्छ संगवारी मन तो जाते जाते आले मके दिया विदा जादपुरे मई पारो करें से जुहा
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में हिंदी सब
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित

0: किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खड़ चुकोट।
2: अरन फसल चुपले कमानी करूँ से अंतर गोटोक फायदा बीती और कमानी आए होन कमानी आए फूल चो कमानी। आज मैं तुमके गुलाब फूल ने बल बपू बीती खत भात जिनिस चो गोट के सांगे से। गुलाब फूल ने नत्रजन के अमोनियम सल्फेट ले देतो राय। ये खत चो नाव आए अमोनियम सल्फेट। ये खत बूटा चो खंदा आरु पाना चो बाढ़ती काजे काम देवाए और जसन स्फुर चो कमिया से बल्ले स्फुर के सिंगल सुपर फास्फेट ले देतो राय। ये बूटा चो जड़ बल्ले बूंद चो काम एवाय और फूल आगर हो एचो काजे काम देवाय। आरु जोन भूई ने पोटास कम रहे से होता सल्फेट आप पोटास ये खत के देतो राय। एचो ले काय होए दे कि गुलाब फूल झपके फूटे दे आरु बीमारी ले बले बाचुन रहे दे। और बल बपू बीती जिनिस मन दाना बीती नहले घोरलो सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण माइक्रो न्यूट्रिएंट एके माटी ने मिसाउन नहले पाना ने छिचुन बले देउक सकास। एबे जित्रो बानी मन की मैं सांगले ए मन ने कोनी बले गोटो कम होलो ने गुलाब फूल ने फूल फूटतोर कम होन जाए से नहले बूटा के रोग बले होन जाए से। काय बानी कम होले कसन बाना चीना दखा दे से एके बले मैं सांगे से। नत्रजन नत्रजन कम होलो ने गुलाब चो पाना मन नानी नानी होन जासोत आरु हृदय महा दखा देसोत। ये पाना मन बूटा ले नी घसरोत आरु होता हुन पाना मन ने लाल रंग चो बानना चीना महा दखा देवात। इस्फुर कम होलो ने गुलाब चो पाना मन बूटाले झड़ून जासोत। खंदा मन कमजोर होऊन जावात और बूंद बले नगत नी बसे। पोटास कम होलो ने पाना चो रेटे रेटे भूरा बले धमस्या महा दखा देवाय आरु पाना डसलो असन दखा देवाय। मैंगनीज नी रलो ने पाना चो ऊपरे मुंडी ने सेमी रंग्या आरु मंजी ने हरद्या दखा दे से। लोहा ये कम होलो ने नुआ पाना मन चो मुंडी मन सेमी रंग्या और मंजी भाग हरद्या होन जाए से। बोरान कम होलो ने नुआ बूटा मंच बाढ़ती ने फरक पड़े से बाढ़ती थेबुन जाए से। दादा दीदी मन अदाय जाना कार्बनिक खत बना तो वाट। ये खत प्राकृतिक खत आए आरु गुलाब फूल चो फसल काजे खूबे लाभकारी बले आए। ये खत ने जमक बल्ले सड़लो गल्लो पाना मन जूना बूटा मन गोबर आरु कचरा लागे से। ये खत के आउर अगर गुणकारी बना तो राय एथा तेल आरो जाड़ा बिचा चो खली के बले मिसाउ सकास। ये चोले नत्रजन आगर मिरे से। ईश्वर काजे एथा मरलो गाय बैला चो हाड़ा चो चूरन बले मिसाउ सकास। असन करुन बनालो कार्बनिक खत गुलाब फूल कमानी काजे खूबे नगत रहे से। भूई ने आमी रोजे बरक फसल धरू से फसल धरतो के होता कार्बनिक जिनिस मन कम होन जाए से। यही लागुन होता कार्बनिक खत उपरे ले देउक लागे से। असन दिलो ने बूटा के सप्पाय बाटले फायदा मिरे से। दादा दीदी मन ये तो रहे गुलाब ने खत भात चो वाट। ये हिसाब ने तुम्हें कमानी करुक सकास और गुलाब फूल चो आगर ले आगर कमानी करुन खूबे लाभ बले कमाउक सकास।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 700

0: 56 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 MHz, और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।
1: कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी की फरमाइश पर। पटेल नगर मालौट पंजाब से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। भाटापारा से आप हैं बचकमाल मोती लाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और बेबी अनीशा। सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी, ललिता फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया। शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजिदा और उनके बहुत सारे साथी। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। देवरी भाटापारा से आप हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। आप सभी ने सुनना चाहा है राम लखन फिल्म का गीत। रचना आनंद बख्शी की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर दिया है मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौड़वाल और नितिन मुकेश ने। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म राम लखन का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% जीएसटी है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666।

रोड मानपुर से आप है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। गांधी चौक रोपड़ से आप है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतक बीरक और मीका बीरक। शिवाजी चौक राजिम से आप है अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से आप है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और उनके बहुत सारे साथी। बंगला मटिया बालोद से आप है शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन। उत्तर प्रदेश से आप है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। बेरडी से आप है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन और धीरज सब्वासेरे। जवाहर गंज जबलपुर से आप है जैनेन्द्र जैन, महेंद्र जैन और सत्येंद्र जैन। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। बागबहरा भदरसी से आप है पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। यवतलमाल विदर्भ से आप है संतोष खड़से, विनोद खड़से। जल रोड रायगढ़ से आप है भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। ऊपरकोट बुलंदशहर से आप है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाद अब्बासी, फरदीन अब्बासी। गोरबा बिलाईगढ़ से आप है देवलाल कर्श, कामिनी कर्श और यश कर्श। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर आरजू फिल्म का गीत।

गांव रतनपुर तहसील झिरांदा जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ से आप हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी अश्वनी और हर्षराज। बुरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से आप हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत। हतकेरा भाटापारा से आप हैं पंचू यादव, दादू यादव। बावली से आप हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बेलस पुरीहा। हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। नगर पंचायत रोहासी से आप हैं डगेसर साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, घनश्याम साहू और अलका साहू। डंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजवी है, राधिका गजवी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गजवी है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप है रोशन देवांगन, कौशला देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। दतरंगी से आप है विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिभा और लक्ष्मीना यदु। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से ही आप है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है गुलाम अली की आवाज में आवारगी फिल्म का गीत।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है। फिल्म है राम अवतार। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। सरोच्चक अमरावती महाराष्ट्र से आप है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, सायमा खान और उनके बहुत सारे साथी। गांधीबाग अकोला से आप है रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। बोरला धारण तहसील मालेगांव से आप है दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। संबलपुर कांकेर से आप है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तेजल यादव। गौरीनगर इंदौर से आप है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। गोलाबाजार बक्सर से आप है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से आप है दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश कुमार मोटवानी। गांधीबाग नागपुर से आप है अशोक कुमार सावलानी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। प्रणाम सिटी खंडवा से आप है शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि, संदीप, माधुरी और उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर राम अवतार फिल्म का गीत।

ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से आप है पोषण बंछोड़, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोड़। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से आप है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। कवर कॉलोनी बड़वाह से आप है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और उनके बहुत सारे साथी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप है गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। आदर्श नगर मलाट से आप है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा। ताजपुर मोरबा से आप है भाई कारी राय, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, पिंकी, रिंकी, रिक्की और उनके बहुत सारे साथी। बक्सर बिहार से आप है शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से आप है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आप है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से आप है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। मलाट कैंप पंजाब से आप है सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंद्र संधु, महावीर संधु और उनके बहुत सारे साथी। अनारकली बाजार जगराव से आप है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गाव्या और उनके बहुत सारे साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है वापस फिल्म का गीत। रचना मजरू की है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म वापस का ये गीत।

महबूब की मेहंदी। आइए अब इस फिल्म का गीत सुनते हैं। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज दी है लता मंगेशकर ने, अनुरोध करता आप है। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप है वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से आप है बदरू अली अंसारी, फर्जू अली वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, औसा जिला लातूर हुन से आप है उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम बी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सानिया शफील और उनके बहुत सारे साथी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से आप है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनर्च आरू साहू। ग्राम लोहेड़ी मोहाबा से आप है जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रिया, रेणु, दिव्यांश, रोनिका और रागिनी यादव। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा। कालका से आप है शिवाचंद्र बजाज, बट्टी बजाज और उनके बहुत सारे साथी। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से आप है गजानन एले, नवदीप एले, शेरी वडनेर। अकोला से आप है दामोदर और अरुणा दामोदर। रंगीनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से आप है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत।

जरूर जरूर। महाराष्ट्र से आप है बाबा साहेब बड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी और कार्तिक। घंटा घर चौक खंडवा से आप है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नवेदा गाजीपुर से आप है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुल गाजीपुर से आप है अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। दौलतबाग मुरादाबाद से आप है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। तालुका नेवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से आप है बंडू लोहार, पोपलघट माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से आप है हरिभाव बिडवे, श्रावण, अनीता बिडवे। गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप है ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खुमेंद्र मसीहा, तुषारानी मसीहा। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से आप है रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। कतियापारा जुना बिलासपुर से आप है सुशील दिवांगन, अखिलेश दिवांगन, लोकेश दिवांगन, आशीष दिवांगन, रवि, रेयांश और उनके बहुत सारे साथी। बमहर चिटीडीह से आप है गंगा देवी दिवांगन, पूनम दिवांगन, धनेश्वर दिवांगन, महेश्वरी, मिल्की और उनके बहुत सारे साथी। जमशेदपुर से आप है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। तीन महुआ खापरखेड़ा से आप है तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू और आरती। महामाया पारा ग्राम दुरचुरा से आप है फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी प्रीतम कुमार साहू। ग्राम दरचुरा से आप है दुदवाहा साहू, भूरी साहू और रेखा मोतीलाल साहू। खट्टी महासमुंद से आप है सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी शर्मा, ओंकार शर्मा और भीषम दाम मानिकपुरी। गणेशपेट महाराष्ट्र से आप

है आंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा। नागार्जुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप है अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। आप सभी ने सुनना चाहा है समीर का लिखा गीत। संगीत नवीन रंदीम श्रवण का है, फिल्म है साजन, स्वर दिया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। तो लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश पर फिल्म साजन का ये गीत।

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन से रूपाली पारई को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाश।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गोट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारी को चंदा
1: और सूरज की तरफ ले
0: जय बिहान। सूरज दीदी बस एक मिनट है,
1: कैसे कर सकते हैं दीदी मन संग गोट करेल छोड़ के ते मोबाइल में अधिक का जरूरी
0: मैं दीदियों का ही काम कर रही हूँ।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे भाई कि मेरी मामी की बेटी की जो ननद है ना, उसने छत्तीस कला ब्रांड के कुछ उत्पाद के ऑर्डर्स के लिस्ट भेजी है और मैं उसे ही हमारे स्व सहायता समूह की दीदियों को भेज रही हूँ।
1: आई भोरा होगी कोई मैं कहा जाना था यहाँ वैसे एक बात तो है चंदा।
0: का दीदी?
1: हमर बिहान के दीदी मन हा बहुत बढ़िया बढ़िया गुणवत्ता वाले जिनिस बनाते हैं।
0: हाँ, वो बात तो है।
1: जैसे बेल मेटल है, कोसा है, माटिक सामान है, मिलेट कुकीज हो गए तो ये कह सकते हैं कि हर जिनिस के उत्पादन करते हैं हमारे दीदी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और दीदी इसमें अच्छी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण जो है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान द्वारा खुद का एक ब्रांड छत्तीस कला लाया गया।
1: और छत्तीस कला ब्रांड छत्तीसगढ़ के नारी मन के सृजन के चिन्हारी आवे। कोसा सिल्क के ताना बाना ले लेके बाजार में मांग के अनुसार सब सामान के उत्पादन भर लगे स्व सहायता समूह के लाखों दीदी मन के आत्मनिर्भरता के निशानी आवे,
0: जिसे एक नाम देकर 19 नवंबर 2025 को छत्तीस कला ब्रांड का शुभारंभ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया था।
1: हाँ हो दीदी हो, छत्तीस कला ब्रांड के शुभारंभ हमारे बर गर्व और तरक्की के आधार आवे।

0: सुरुज दीदी, छत्तीस कला एक नाम से कहीं बढ़कर एक समान गुणवत्ता, भरोसेमंद बाजार हर एक ग्रामीण शिल्पकार दीदियों के लिए एक स्थायी आजीविका का वादा है। वर्तमान में छत्तीस कला ब्रांड के अंतर्गत उत्पादों की बिक्री विभिन्न माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन बाजार, ट्रेंडिंग चैनलों एवं गिफ्टिंग सेगमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है।
1: और जाना था चंदा
0: का दीदी,
1: बिहान के अंतर्गत दीदी मन, महिला उद्यमी मन के बनाए उत्पाद मन के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और कीमत में बढ़ोतरी ला बढ़ावा दे खातिर ग्रोथ सेंटर के स्थापना करेगी से। और वर्तमान में बस्तर और सरगुजामा दो ग्रोथ सेंटर चलाए जावा था।
0: ग्रोथ सेंटर के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है। दोनों ग्रोथ सेंटरों में 10-10 महिला उद्यमी काम कर रही हैं और इन ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सहयोग कर रहे हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में PWC संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है।
1: बस्तर के ग्रोथ सेंटर में हल्दी, मिर्चा, धनिया, तिखुर, अमली के रोटी, बेल मेटल, मिलेट कुकीज असन गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करे जावा था।
0: ऐसे ही सरगुजा के ग्रोथ सेंटर में सरसों के तेल, जीरा फूल चावल, विष्णुभोग चावल, मोरिंगा पाउडर, शहद, कोसा उत्पाद जैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जा रही है। वर्तमान में 16 उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत की जा रही है। सुरुज दीदी, जल्दी ही निकट भविष्य में 25 उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग 36 कला के अंतर्गत होने लगेगी। तो आइए दीदियों, समृद्धि सरगुजा संकुल संगठन अंबिकापुर के अंतर्गत उजाला स्व सहायता समूह ग्राम श्रीगढ़ की कोषाध्यक्ष श्रीमती हेमंती रजवाड़े से जानते हैं कि वो कैसे ग्रोथ सेंटर का संचालन कर रही हैं।
2: जय बिहान दीदी।
3: जय बिहान दीदी।
1: दीदी तो अपन बारे में बताते।
3: दीदी पहले तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, समूह के जुड़ने के बाद एक रोजगार मिला, फिर हम लोग का जो काम करते थे जैसे सरसों तेल, जीरा फूल चावल, मुरेंगा पत्ती का, तो उसमें अच्छा से प्रॉफिट भी नहीं होता था, मार्केट भी नहीं पाते थे हम लोग। ग्रोथ सेंटर में सरसों तेल हो गया, मुरेंगा पाउडर हो गया, जीरा फूल चावल हो गया, विष्णुभोग चावल हो गया, उसको लाते हैं हम लोग, उसके बाद उसको छटाई वटाई बिनाई करके उसका प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें पैकेजिंग करते, जिसमें कि हम लोग का 36 कला ब्रांड है, जिसमें उसका GST बिल है, FSSAI लाइसेंस है, लैब टेस्ट हुआ है, जिसमें उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको पैकेट में बेचते हैं हम लोग 36 कला ब्रांड में, तो कर पैसा ज्यादा मिलते। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उसमें भी हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है। 36 कला ब्रांड हो गया ना, एक लेबल हो गया, पैकेजिंग हो गया, स्टैंडर्ड लेबल का होता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ग्रोथ सेंटर में भी काम दिया जाता है दीदी, उसमें भी रोजगार मिल रहा है। बिहार में जुड़े के बाद बहुत आगे निकल गई हूँ, सरस मेला था अभी भोपाल में, रायसेन में, वहाँ जाने का मौका मिला, मंत्री लोग से भी मिलने का मौका मिला, यहाँ रायपुर भी आने का मौका मिला, मतलब ये मेरे जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। स्कूटी खरीद ली हूँ बैटरी वाला, जिसे कि मैं अपने घर का जरूरत को पूरा कर पाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं उसको भी पढ़ा पा रही हूँ, अच्छे स्कूल में दे पा रही हूँ, तो मेरे समूह के दीदी लोग भी लखपति दीदी बन गए हैं। ये सब बिहार का ही देन है दीदी, और लखपति दीदी बने इसलिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती।
0: वाह दीदी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। पता है सुरुज दीदी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत एकल ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 36 कला ब्रांड का ट्रेडमार्क पंजीयन कराया गया है।
1: हो गई।
0: और ऐसे में महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों के लिए अधोसंरचना विकास, बाजार तक पहुंच और उपयोग, ब्रांडिंग, पहचान और तकनीकी, प्रशासनिक और प्रबंधकीय सहयोग उपलब्ध कराना संभव हो रहा है। तो आइए हमारी दीदी श्रीमती सुनीता ग्राम चिलकुटी जिला बस्तर से मिलते हैं।
4: जय बिहान दीदी।
5: जय जय बिहान दीदी। मैं अभी जीवन ज्योति महिला क्लस्टर की सचिव हूँ और ग्रोथ सेंटर अभी संचालन कर रही हूँ।
0: अच्छा, तो ग्रोथ सेंटर में आप क्या काम करती हैं?
5: ग्रोथ सेंटर में जैसे मैम हम लोग का अभी 36 कला ब्रांड, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस रस में अभी दिख रहा है, तो जैसे बाहर से भी कोई कोई ऑर्डर करते हैं
0: हाँ हाँ।
5: तो उनके लिए उनका ऑर्डर आता है ना
0: हाँ।
5: तो मेरे ही मोबाइल में ओटीपी आता है
0: अच्छा।
5: हम ओटीपी को एक वेबसाइट है उसमें जाके ओटीपी नंबर यानी कि वहाँ पे डालते हैं उसके बाद फिर वहाँ पे दिखाता है कि आपका ए ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आया है फिर उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ना फिर उसको पैक करते हैं पैक करने के बाद डिलीवर बॉय आता है और उसको फिर डिलीवरी कर देते हैं।
0: पहले आप बिहान से जुड़े थे तो आप क्या काम करते थे और अब ग्रोथ सेंटर में काम करने के बाद आपको कैसा लगता है?
5: मैम पहले बिहान में जुड़ी थी तो खाली समूह में ही थी मैं
0: हाँ।
5: और जैसे मैं क्लस्टर में जुड़ी हूँ क्लस्टर में जुड़ने के बाद ही ग्रोथ सेंटर में जुड़ी हूँ
0: हाँ।
5: और अभी ग्रोथ सेंटर के माध्यम से यानी की अच्छा अच्छा चीजें जानने को मिल रहा है। मैं कभी रायपुर नहीं आई थी मैं फर्स्ट कवाई बोलने से यहाँ सरस मेला वहाँ पे आई थी हम लोगों का बैचलर मीट हुआ उसमें आई थी तब मैं रायपुर आई थी।
0: अच्छा।
5: आपको और एक बात बता रही हूँ जैसे समूह की दीदियाँ बना रहे थे सामान वो सामान का ना उचित दाम नहीं मिल रहा था और ना ही पैकेजिंग ठीक थी और उनका पसाई नहीं था और लाइसेंस भी नहीं था। अभी जैसे हम ग्रोथ सेंटर में समूह की दीदियाँ मन देना स्टार्ट किया है तो उनका पैकेजिंग अच्छा हो रहा है उनका ब्रांडिंग भी अच्छा से कर रहे हैं और दाम भी अच्छे ही मिल रहा है उनको। और एक बात कहना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ ब्रांड को ना 40 सुपर मार्केट स्टोर में अभी हम लोग लगाए हैं। अभी हम लोग ना करीबन बस्तर में 4 लाख तक का बिक्री कर चुके हैं और सरगुजा में 2.5 लाख तक बिक्री कर चुके हैं।
0: तो सबके जीवन में क्या बदलाव आया है और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो?
5: मैम बदलाव तो बहुत आया है मैं ही देख लो मैं पहले घर पे ही रहती थी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी जैसे मैं समूह में जुड़ी क्लस्टर में जुड़ी उसके बाद फिर ग्रोथ सेंटर में जुड़ी अभी मैं कहीं भी जा रही हूँ वैसे ही समूह की दीदियाँ जो अभी समूह में जुड़े हैं जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो हम लोग के ग्रोथ सेंटर में दे रहे हैं तो उनको अच्छा दाम भी मिल रहा है और उनका आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुधर रहा है
0: और आत्मविश्वास
5: बढ़ रहा है। दीदियों को बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे जो भी सामान बना रहे हैं मैं दीदियों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने उत्पाद ग्रोथ सेंटर के माध्यम से ही बेचें जिससे आपको अच्छा दाम मिलेगा और आपके उत्पाद को छत्तीसगढ़ ब्रांड के नाम पे राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर पहचान भी मिलेगी।
1: सुना था चंदा स्व सहायता समूह के दीदी मन छत्तीसगढ़ ब्रांड ले जुड़ के आर्थिक रूप ले सशक्त बना था वे।
0: और इसी कड़ी में दोनों ग्रोथ सेंटर ने अमेजोन के साथ MOU भी किया है। SHG उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो रिलायंस मार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में विक्रय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुबंध किया गया है। ऐसे में वे कैसे ग्रोथ सेंटर से जुड़कर अपने उत्पाद को आसानी से बेच पा रहे हैं आइए जानते हैं। आप हैं श्रीमती डालिम बघेल और श्रीमती रुद बघेल दीदी जिला बस्तर से।
2: जय बिहान दीदी।
4: जय बिहान दीदी।
0: डालिम बघेल दीदी आप क्या काम करती हैं?
6: हम टीकुर उत्पाद करते हैं।
0: ग्रोथ सेंटर से आप कैसे जुड़ी और उसके बाद आपका क्या अनुभव रहा?
6: पहले ना हम लोग बाजार में ले जाते थे कभी ऑटो मिलता था कभी नहीं मिलता था जैसे बाजार में कभी कम दाम में बेचते थे और कभी इनकम होता था कभी नहीं होता था। जब हम लोग को ना ग्रोथ सेंटर खुला है बोल के दीदी लोग से पता चला तभी हम लोग ना ग्रोथ सेंटर में दीदी लोग को दिए तभी ग्रोथ सेंटर से हम लोग को दुगना फायदा हुआ। मार्केट में है ना 500-600 किलो में बेचते थे और जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े तभी हम लोग 1 किलो 1000 में बेचने शुरू किए और घर बैठे ग्रोथ सेंटर से हम लोग माल देने शुरू किए।
1: रूप बघेल दीदी आप जिससे हल्दी के उत्पादन लेते हो तो ये ग्रोथ सेंटर और छत्तीसगढ़ ब्रांड से आप कैसे जुड़े हो?
7: हमारे ग्राम पंचायत के आम सभा बैठक में दीदी लोग बताए कि ग्रोथ सेंटर में कच्चा माल लिया जाता है। आप अपने घर मतलब घर में हल्दी का उत्पादक करते हैं तो कच्चा माल आप हमें बेच सकते हैं। पहले हम लोग को मार्केट में जाके बेचना पड़ता था लेकिन जब से ग्रोथ सेंटर में जुड़े हैं तो उसमें हमको फायदा होती है और उसमें ये भी सुविधाएं हैं कि दीदी लोग घर में आके हमारे कच्चा माल लेके जाते हैं हमको बाहर वाले को देना नहीं पड़ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जिस ग्रोथ सेंटर में मैं अपना माल दे रही हूँ उस मेरे ही समूह के दीदियां हैं मेरे ही ग्रोथ सेंटर के दीदियां हैं और मेरे छत्तीसगढ़ ब्रांड के दीदियां हैं।
1: तो सुरता रखो दीदी हो छत्तीसगढ़ ब्रांड छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गुणवत्ता और स्थानीय उत्पाद मनला नवा पहचान भी देवत हवे।
0: बिल्कुल ये विश्वास की बुनियाद है आपका अपना रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट। इसमें हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
1: ये टोल फ्री नंबर में सवाल पूछे हैं महामाया स्व सहायता समूह सांकरा लेहे भारती ध्रुव, जय संतोषी स्व सहायता समूह जरगांव लेहे मोहनी बाई साहू, एकता स्व सहायता समूह भैंसापारा लेहे दिनेश्वरी, जय संतोषी स्व सहायता समूह किरवई लेहे संतोषी, जय माँ वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह लेहे दुर्गेश्वरी साहू आप हैं भैंसापारा ले, प्रज्ञा स्व सहायता समूह समरिया ले लक्ष्मी, सरस्वती स्व सहायता समूह खनौदा लेहे मधु खरे, माता सुरका स्व सहायता समूह लेहे देवतीन बाई साहू आप हैं बोरी कारका ले, माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह सिरसा लेहे प्रणीता तिवारी और जय शीतला स्व सहायता समूह सुढ़ी लेहे तलेश साहू। अब पूछे गए सवाल मन ले आज एक सवाल लॉटरी निकाल के चुने हैं, ये माँ लड्डू गोपाल स्व सहायता समूह सरस्वती समूह ग्राम पंचायत छिनौला ले पूछे हैं, रागी लड्डू बनाथन तो एकर मार्केटिंग कैसे करन और 36 कला ब्रांड ले कैसे जुड़ सकथन।
0: रागी लड्डू की मार्केटिंग के लिए सर्वप्रथम लड्डू निर्माण के समय SOP का पालन करें। उत्पादन की पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग 36 कला ब्रांड के अंतर्गत करने के लिए बिहान कर्मचारियों से संपर्क करें और ग्रोथ सेंटर से जुड़कर लड्डू की मार्केटिंग कर सकते हैं।
1: तसुरता रखो दीदी हो, एक छोटे से गांव के दीदी मन की कला मेहनत और पहचान ले लेके देश दुनिया तक ये यात्रा आवे महिला सशक्तिकरण के यात्रा।
0: और दीदी ये कहानी है रचनात्मकता दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की, पहचान है 36 कला ब्रांड की।
1: अब अपन पहचान ले सम्मान के रास्ता में बिहान संग कदम मिला के मिल के बढ़वो।
0: हाँ
1: यही परन संग बिहान के अवैया कार्यक्रम में दीदी मन के सफलता के गोठ लेके फिर मिलवो।
0: हो
1: तब तक बर देवो विदा, जय जोहार जय बिहान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम

0: को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय

0: पर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: इत बदले मत तंक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत तंक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
10: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। एथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
11: GST चो दर के कम कर लो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से, बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से, नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
3: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी।

0: जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है, या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के

0: प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।

0: असली काम वो क्या है भला राम कृपाल?
1: यही कि मैं जानना चाहता हूं कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
0: राम कृपाल
1: जी,
0: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ।
0: पर इसका नतीजा यह होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र

0: के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय 3:03 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। शाम 4 बजे हमारी सांध्यकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। इस समय शाम के 4 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
0: जी जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूं तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
0: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को।

0: आते जाते हुए
1: ओके
0: उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं
1: ओके
0: तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है
1: जी।
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं
1: ओके।
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं
1: ओके।
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। और जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी।
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ए मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

0: तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला, तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी,
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है, तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी, एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा, पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगा, ये नक्सलवाद वहाँ पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बना

0: करना है अपने लिए, तभी इन्फॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहां पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे। हमारे डॉक्टर्स वहां पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये सब एसएसबी कर रही है।
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहां के लोगों को टेलरिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए, या आर्मी के अगेंस्ट, या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है, तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा। तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ, वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं। उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे। ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट।
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं। जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे। तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ, मैं जरूर बता चाहूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशन कर पाए। नाम लेना चाहूंगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
1: जी,
0: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए एक छोटी टुकड़ी बनाई क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था उसके संग 20 जवान करीब तो वो जवानों का सिलेक्शन उसके बाद उनकी ट्रेनिंग उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ और हमारी टीम ने आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है ठीक है गौरवान्वित इंसान फील करता ही है लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली दे वो वेरी हैप्पी शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी।
0: बिल्कुल आतंक का पर्याय थे ये नक्सली ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे इनके पास हथियार थे इनके पास AK-47 इंसाफ इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे उनके घर में रहते थे तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है लोग खुश हैं आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ मैं समझ सकता हूं आप ऑपरेशन में थे आपकी एक टीम थी लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल ये हमारी जो टीम थी इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी इसके बाद जो है उनका भी कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन हुआ और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे और मोटिवेशन तो होता ही है फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है तो एक कॉम्पिटिशन है और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप
0: बिल्कुल हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: और मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जवाब मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में क्या खींच कर लाया आपको ऐसे कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं आपके अपने अंदाज में
0: बिल्कुल हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है उसकी क्या मोटिवेशन था किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में।
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद वो शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाई है, और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम है हर चीज के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
1: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: हूँ,
1: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास,
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे,
0: जी।
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूं, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूं ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहां से लिख रहे हैं ये मुझे बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफकोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है और जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें JNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी,
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके
0: जी,
1: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, AI का जमाना आ गया, आप लोग AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि AI के अपने भी कौन से हैं उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा है मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट ममना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सब की तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूं।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं।
0: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूं जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ, आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर सुनिएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा शाम 7 बजे। शाम 7:21 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8 बजे कार्यक्रम डांडामाली में आज हम लेकर आएंगे दशमी और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत पीला मन का जिगोट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी गोपाल पोयाम की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ।

0: रात 9:30 पर कार्यक्रम घुमकली में आज हम आपको सुनवाएंगे कमलोचन और साथियों के स्वर में नाट गीत। रात 10 सुनेगा गैर फिल्मी गीत और रात 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब जानें कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर सुनेगा कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा पद्माक्षी अवस्थी का। श्री रामचरित मानस के गायन का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:25 पर। कृषि सावई की बेड़ा खड़ा चुगोट आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर हम आपको सुनवाएंगे राउद गिरली पाड। कलाकार होंगे धर्मो और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर हम प्रसारित करेंगे रोज की तरह सुबह 7:05 पर। आकर्षण होंगे झलकी मेम साहब की चप्पल। लेखक होंगे जगदीश अधिकारी। प्रस्तुति होगी के परेश की और होगी सुमधुर फिल्मी गीतों से सजी मधुरिमा। सुबह 9 सुनेगा लोक साहित्य पत्रिका मोचोमाटी। संपादन होगा भरत कुमार गंगादित्य का। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कल की फिल्म होगी राम बलराम। गुलशन कार्यक्रम में सुबह 10 कल सुनिएगा उद्घोषक की पसंद के फिल्मी गाने। गुरदुम कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर कल सुनिएगा बसंती और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। सुबह 11 रूसरूसा कार्यक्रम में कल सुनिएगा लोकगाथा आधा राजा की दूसरी कड़ी। गायिका होंगी सुबरी बाई। सुबह 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कला और कला माफ कीजिएगा सुबह 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कल का हमारा यह कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका ध्वनि भानुशाली पर। दोपहर 12 सुनिएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हमारी शांतिकालीन सभा में कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी हम प्रसारित करेंगे शाम 5:10 पर। शाम 6:35 पर सुनिएगा जगार गीत। कलाकार होंगी सुदनी और साथी। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर हम प्रसारित करेंगे शाम 7:00। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8:00 कार्यक्रम घलर में कल हम आपको सुनाएंगे भद्रू कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत पीला मन का जिगोट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी बंशी राम कश्यप की। रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम नंजर। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे तुकेश्वर प्रसाद खूटे से ली गई बलबीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल पत्रिका में कल आप सुनेंगे मैराथन खिलाड़ी कुसुम शार्दुल से ली गई भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। रात 10 बजे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की। संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में।
1: जोहार रेडियो सुन तो सपाय लोग मन आज काली चुका एक विषय मन संग चो कार्यक्रम संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर संगवारी मन आज ही चुए कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान उपरे चो आए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चो गेलो 9 जून के 10 बरख पूर्ली 9 जून 2016 के मूर होलो बीती ए अभियान केंद्र सरकार चो गोटो खूब खास स्वास्थ्य योजना आए। ए चो हिसाब ने रोजे महीना चो 9 तारीख के सरकारी अस्पताल मन और स्वास्थ्य केंद्र मन ने पीला हरिन मेहरार मन चो फोकहा ने देह चो जांच हुआ है। छत्तीसगढ़ चो भुई माटी देश चो दूसर राज ले भीने आसे। बस्तर, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिला चो बड़े भाग मन रान बन बीती ठाना है। कई गांव मन असना से जिथा चमस बतरने अमरी नहीं होए। कई बरख ले असन ठान मन ने स्वास्थ्य सेवा अमर तोर सरकार काजे बोले खूब कठिन रली से। असनी चीपाडन के लेख करुण भाती केंद्र सरकार बाटले सुरक्षित मातृत्व अभियान मूर करतोर होली से। 10 बरख पहिल मूर होलो ए अभियान ले छत्तीसगढ़ चो अमरुक निशक्त असन लाफी लाफी चो डोंगरी घाटी और रान भीतरे चो गांव ने रतो बीती मेहरार मन काजे स्वास्थ्य सेवा के खूब्बे जाना चीना बना ली से। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बाटले मिशन भाती वाट करून हाट बाजार मन ने मोबाइल मेडिकल यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मन ने खास जानकार डॉक्टर मंचो सेवा अमराला। आजी जे ठान मन ने के भाई डॉक्टर अमरुक नहीं सकते रहला हुता बले पेटे हारिन मंचो सरलगा पंजीयन जांच और दखा रखा होई से। ये अभियान हिसाब ने आशा कार्यकर्ता मन गांव गांव जौन भाती पेटे हारिन मंचो पंजीयन करून हुनमन के सरलगा जांच करा तो काजे छितवत और समया ने काम पड़ले अस्पताल अमरा तो काजे बोले सहायता करुआत। संगे ची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण संचो दखा रखा करुआत हुताए ANM टीकाकरण पहिल हार जो जांच और खास कागजात मन के जुहा तो काम करुआत। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मन ने काम करतो बीती सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मन पहिल हार चो ग्रहा गोट के चिनुन भाती जानकार डॉक्टर मन संगे गोट बात करुआत। स्वास्थ्य जानकार मन बोलुआत कि खुबे दंड बीती समया नहाले दंड पावते बेरा हुनके तुरते गुचौकले हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चो सबले मुरगोट आगर ग्रहा बीती पेटेहारिन मन के चीता तोराए। ये चो हिसाब ले गंभीर एनीमिया उच्च रक्तचाप देहने रलोबेरा मधुमेह बलो ने जे क्या में शुगर बलो से पहिल जचकी होतोर इस सफाए झंझट नानी उमर नहाले आगर उमर ने देहने रतोर और जुड़वा पिला जसन दुई जन पिला मन हुआत असन होतोर जसन गोट मन के चिंतोर काम हुआ है। छत्तीसगढ़ ने ए अभियान हिसाब ने आगर संख्या ने खुब्बे ग्रहा दंड बीती पेटेहारिन मेहरार मन के चिनलोर आसे असन मामला मन ने चिनलोर पाछे हुनमन के बड़े अस्पताल चो उपचार सहायता देतो वाट जे चोले जज की बेरा काई बले दंड गरा नी हुक सको इस सपाय को रुख हुआ। गेलो खिंडिक बरक मन ने डिजिटल तक निकले मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम मन के नुआ बाढ़ती मिरली से PMSAM पोर्टल ले देहने रलो मेहरार मन के चिंतोर हुआ है। एक कोनी बले स्वास्थ्य केंद्र ने जांच होलो पाछे जानकारी के तुरते ऑनलाइन दर्ज करुआत कोनी बले मेहरार के कोनी ग्रहा चिपा आसे जाले कहीं चीना आसे जाले हुंचो जानकारी हुन संचो उपचार ठान मन ने अमरातोर हुआ है। जज की चो अंताज करलो दिनांक डॉक्टर चो सांगलो दिनांक और खास काम पड़तो सहायतो जो जानकारी रलो ने अड़ना बेरा बरसक हिसाब ले उपचार करुख हुआ है। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल निगरानी प्रणाली चो स्वास्थ्य सेवा मन के आगर विश्वास बीती और असरकारी बना लो रासे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चो 10 बरख पूर्तो के 9 जून के राष्ट्रीय हिसाब चो कार्यक्रम के मूर करला। ए मौका ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन ने चेतानी और लोग मन संगे भेंटघाट बीती कार्यक्रम होय से ए चो हिसाब ने पेटेहारिन मेहरार मन और हुनमन चो कुटुम्ब के फोकहा ने मिरतो सहायता सेवा चो लाभ धरतो काजे चेतातुर काम होय से। केंद्रीय मंत्री बल्ला की लाफी लाफी चोठान मन ने दंड नहलोर स्वास्थ्य सेवा अमरातोर खास जानकार डॉक्टर मन के हुन ठान मन ने पठातोर जज की चोपाछे दखा रखा और बरसक बना तो संगे शहर चो गरीब गांव पारा मन लगेले सेवा सहायता अमरातोर पक्की करतोर केंद्र सरकार चो मूर काम आए। श्री नड्डा बल्ला की ड्रोन बीती आपूर्ति प्रणाली वाट टेलीमेडिसिन डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रशिक्षित मिडवाइफरी सेवा के ए तो समय ने मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम मन संगे और बरसक बनातोर होई दे। हुन बल्ला की पेटेहारिन मेहरार मन और जन्म लो कौरी पिला कोनी बले समाज चो सबले मुरजी मारस होत जिदल दाए गोटोक माए चो नंगत दखा रखा हुआ है तेबे गोटोक जीव न चिनी बाचे पहारले कुटुम्ब समाज और ए तो समय चो भले राखा जतन पक्की हुआ है।
0: अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और मुझे तो आप सभी जानते ही हैं, मैं हूं आपकी कंपेयर दोस्त रेखा नायक।
1: और मैं हूं आपका दोस्त देवश्री समर्थ। आप सभी को हमारा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार।
0: अच्छा देवश्री, एक बात बताओ।
1: क्या बताओ रेखा, पूछो।
0: तुम अपने सपनों में क्या देखती हो, मतलब कि तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, ऐसा कुछ अपने बारे में बताओ जो तुम सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ हो।
1: हाँ बिल्कुल, सपने तो बहुत देखता हूँ रेखा, लेकिन अफसोस है कि सारे सपने सच नहीं होते।
0: क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। अगर तुम पूरी शिद्दत से सपनों को पूरा करने में जुट जाओ तो जरूर होंगे।
1: हाँ सही कहा रेखा।
0: मैं ये सपनों के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ देवश्री, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर युवा, हर परिवार और पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। लड़के और लड़कियों के सपनों में समानता।
1: बिल्कुल, सपने हर इंसान की जिंदगी का आधार होते हैं। सपने ही हमें आगे बढ़ाने, संघर्ष करने और सफलता पाने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या लड़कों और लड़कियों के सपने अलग अलग होते हैं?
0: जी हाँ, अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान, सफलता और खुशहाली चाहता है ना? चाहे वह लड़का हो या लड़की, भविष्य को बेहतर बनाना दोनों ही चाहते हैं।
1: सही कहा आपने, और दोनों ही अच्छे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं उनका एक अच्छा करियर हो, समाज में उनकी पहचान बने और परिवार उन पर गर्व करे।
0: बिल्कुल, एक समय था जब माना जाता था कि लड़कों और लड़कियों के सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां काफी अलग बदल चुकी है। आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी बन रही है।
1: हाँ,
0: ना?
1: हाँ सही कहा रेखा। और वहीं लड़के भी कला, संगीत, फैशन डिजाइनिंग और अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं।
0: इससे यह स्पष्ट होता है कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। प्रतिभा और मेहनत किसी लड़के या लड़की की मोहताज नहीं होती।
1: हाँ दोस्तों, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नता हो सकती है रेखा। तुम्हें पता है कि सामाजिक परिस्थितियां लड़के और लड़कियों के सपनों को प्रभावित करती हैं?
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि लड़कों पर अक्सर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभालने का दबाव रहता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि जल्दी आत्मनिर्भर बने, और वहीं लड़कियों के सामने कई बार सुरक्षा, सामाजिक प्रतिबंध और परिवार और करियर के बीच संतुलन जैसी चुनौतियां आती हैं।
0: अच्छा, लेकिन देवश्री, हम में से कई युवा लड़के लड़कियां हैं जिसने बिना ये सोचे कि कौन सा काम लड़कों के लिए है या कौन सा काम लड़कियों के लिए, हर काम को सभी के लिए एक समान माना है।
1: हाँ रेखा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एग्जाम्पल के लिए खेल के मैदानों को ही ले लो। जितने खेलों में लड़के आगे हैं, उतनी ही लड़कियां दोनों अपनी अपनी जगह पे बराबर काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, इतनी देवशी, इतनी चर्चा से तो यह समझ आता ही है कि भले दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सपनों की उड़ान दोनों की एक जैसी ही होती है।
1: बिल्कुल सही कहा रेखा तुमने।
0: तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज कार्यक्रम में क्या है खास। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों कार्यक्रम आज के फनकार, जिसमें हम सुनेंगे प्यारे प्यारे गीत और सुनेंगे कार्यक्रम खेल समाचार, कार्यक्रम सामान्य ज्ञान और साथ ही सुनेंगे कार्यक्रम वार्ता। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर।
1: दोस्तों अब रुक करते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर, जिसमें हम सुनेंगे कुमार शानू की आवाज में बेहतरीन नगमे।
0: बिल्कुल दोस्तों, 90 के दशक का नाम लेते ही कुमार शानू आवाज कानों में गूंजती है, जिसमें प्रेम, दर्द और भावनाओं को सुरों में ढालकर लाखों दिलों पर राज किया है।
1: हाँ श्रोताओं, 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में जन्मे कुमार शानू का असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है। उन्होंने अपने करियर में हजारों गीत गाए और लगातार 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों सुनते हैं आज के फनकार कार्यक्रम का पहला गीत, जो प्यार और भावनाओं की गहराई को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता हुआ फिल्म सैनिक से। इसे स्वर दिया है कुमार शानू और साधना सरगम ने। इसके गीतकार हैं समीर, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: दोस्तों, कार्यक्रम आज के फनकार में गीतों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन पहले सुनिए ये वार्ता डिजिटल बस्तर और युवा विषय पर, जिनके वार्ताकार हैं रुखसाना खातून।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं रुखसाना खातून, और आज मेरे चर्चा का विषय है डिजिटल बस्तर और युवा। दोस्तों, आज का समय पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है। अब लगभग हर काम मोबाइल और इंटरनेट की मदद से होने लगा है, चाहे पढ़ाई करनी हो, नौकरी की जानकारी लेनी हो, बैंक का काम करना हो, टिकट बुक करना हो, या किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना हो। हर चीज अब डिजिटल माध्यम से आसान हो गई है। बस्तर जैसे क्षेत्र भी अब धीरे धीरे इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। पहले बस्तर को केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति के माध्यम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ के युवा तकनीक की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल बस्तर का मतलब केवल मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नहीं है, इसका मतलब यह है कि बस्तर के लोग तकनीक का इस्तेमाल केवल शिक्षा, रोजगार, व्यापार और जीवन को बेहतर बनाए। आज गांवों में भी लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। इससे लोगों का समय भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। कुछ साल पहले तक बस्तर के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बहुत कम थी।

0: लोगों को छोटी छोटी जानकारी के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। कई गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। युवा अब मोबाइल के माध्यम से नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया इनके लिए सीखने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। कोविड के समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा समय में आया। कोविड के समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा समझ में आया। अब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, तब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई जारी रही। बस्तर के कई छात्र भी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में नेटवर्क और मोबाइल की समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने डिजिटल शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया। आज कई छात्र ऑनलाइन वीडियो देखकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं की भूमिका डिजिटल बस्तर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। युवा कई तकनीक को जल्दी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आज का युवा केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद का काम शुरू करने की भी सोच रखता है। कई युवा ऑनलाइन काम करके घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग YouTube चैनल चला रहे हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। बस्तर की सांस्कृतिक और कला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की हस्तकला, लकड़ी की कला, बेल बैटम आर्ट और लोक नृत्य पूरी दुनिया में पसंद किया जाते हैं। पहले इन चीज़ों की पहचान केवल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद से इन्हें देश और विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इससे स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी फायदा हो रहा है। डिजिटल तकनीक ने व्यापार करने का तरीका भी बदल दिया है। अब छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। UPI, QR कोड और मोबाइल बैंकिंग ने पैसे के लेन देन को आसान बना दिया है। पहले बैंक के छोटे छोटे कामों के लिए लंबे लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब कई काम मोबाइल से ही हो जाते हैं। इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं। आज के युवा सोशल मीडिया का उपयोग करके मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि जानकारी और सीखने के लिए भी कर रहे हैं। कई युवा ऑनलाइन कोर्स करके नई स्किल सीख रहे हैं। आज के युवा सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि जानकारी और सीखने के लिए भी कर रहे हैं। कई युवा ऑनलाइन कोर्स करके नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन टीचिंग। इन स्किल्स की मदद से वे रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने युवाओं को दुनिया से जोड़ दिया है। अब वे केवल अपने गांव या शहर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश और दुनिया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल बस्तर के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट सही से काम नहीं करता। बिजली की समस्या भी कई जगहों पर बनी रहती है। सभी परिवार अच्छे स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने में सक्षम नहीं हैं। कुछ लोग डिजिटल चीज़ों का सही उपयोग नहीं जानते, जिसके कारण वे ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साइबर अपराध भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते जाते हैं। फर्जी कॉल, गलत लिंक और OTP धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को चाहिए कि वे खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। सरकार भी डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने का प्रयास कर रही है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति, आधार, राशन कार्ड और अन्य योजनाओं की जानकारी अब इंटरनेट से आसानी से मिल जाती है। अगर बस्तर के युवा सही दिशा में तकनीक का उपयोग करें तो आने वाले समय में बस्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। ज़रूरत है केवल सही मार्गदर्शन, अच्छी शिक्षा, बेहतर इंटरनेट सुविधा की। भविष्य का बस्तर ऐसा हो सकता है जहाँ हर गांव डिजिटल रूप से जुड़ा हो, हर युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो और स्थानीय कला व संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिले। तकनीक का सही उपयोग बस्तर को शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि डिजिटल बस्तर का सपना तभी पूरा होगा जब युवा आगे आकर इसमें भागीदारी निभाएंगे। युवा ही बस्तर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे तकनीक को सही तरीके से अपनाएं और अपनी संस्कृति के साथ लेकर चलें और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें तो बस्तर का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रखना ही असली विकास है। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वार्ता डिजिटल बस्तर और युवा। वार्ताकार थी रुक्शाना खातून। तो दोस्तों फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर। अब सुनते हैं युवाओं के दिलों की धड़कन बन जाने वाले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म आसिकी से और इस गीत को अपनी दिलकश आवाज में सजाया है कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, हम और गाने भी सुनेंगे कुमार शानू के आवाज में, लेकिन उससे पहले जानते हैं ज्ञान से जुड़ी बातें। दोस्तों, क्या आप कभी सोचा है कि दुनिया में कितनी सारी ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें जानकर हम हैरान हो जाते हैं? यही तो है सामान्य ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें दुनिया को समझने, सोचने और सही निर्णय लेने की ताकत देता है।
5: तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के बारे में।
4: दोस्तों, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को उठाना है।
5: दोस्तों, अब जानते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा रखने वाले हाथियों के बारे में। दोस्तों, भारत में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु का दर्जा प्राप्त है। हाथी प्रतिदिन लगभग 100 से 150 किलोग्राम तक हरी पत्तियां, घास, टहनियां खा जाता है और उसे लगभग 150 लीटर पानी की जरूरत होती है।
4: दोस्तों, 11 जून यानी कि आज ही का दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से दुनिया भर में हर जगह बच्चों के जीवन में खेल को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाता है। 25 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 से अधिक देशों में समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का निर्णय लिया।
5: दोस्तों, अब जानते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मंडल इसरो के बारे में, जो कि भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है।
4: दोस्तों, अब जानते हैं अटूट आस्था और विनाश और पुनर्निर्माण के लिए विख्यात गुजरात के स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में, जिसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा 725 ईस्वी में सूबेदार अलजुनैद ने तोड़ा। 1026 ईस्वी में मुस्मैद गजवी ने 17वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़े जाने के बावजूद भी आज भी वह अपने स्थान पर बना हुआ है।
5: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के लिए सामान्य ज्ञान में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को भी मिला होगा।
4: बिल्कुल दोस्तों। दोस्तों, अब फिर रुक करते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर और सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में फिल्म फूल और कांटों से लिया गया ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। गीतकार है समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों अब बढ़ते हैं कार्यक्रम खेल समाचार की ओर।

0: दोस्तों, खेल की दुनिया में हर दिन नए रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, पुरानी सीमाएं और जन्म लेते हैं नए सितारे।
1: बिल्कुल देवश्री, तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेल समाचार और लेते हैं खेल जगत की छोटी बड़ी हलचल की जायजा।
0: दोस्तों, पहली खबर है अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से, जहां भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में जापान को हराकर जीत हासिल की। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: दूसरी खबर है सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच गोवा के मड़गांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की है।
0: अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाली आगामी महिला T20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं, जिनमें भारत के पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और जतिन भी पैनल का हिस्सा होंगे।
1: दोस्तों, अगली खबर है टेनिस जगत से। भारत की सृष्टि किरण बनी अंडर 13 खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी स्थान हासिल कर लिया है। 13 वर्षीय सृष्टि किरण ने ITF जूनियर रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 397वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 8 रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर हासिल किया है।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेल समाचार। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।

दोस्तों फिर रुक करते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर, जिसमें हम सुनेंगे फिल्म अ लव स्टोरी के खूबसूरत गीत, जिसे स्वर दिया है कुमार शानू, बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीतकार है महान आर डी बर्मन का। सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत। और दोस्तों हमारे आज के फनकार कार्यक्रम में फनकार थे कुमार शानू।
1: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल शाम होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। मैं रेखा नायक
0: और मैं देवर्षि समर्थ, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। समाचार अब हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर AIR पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हर नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहिन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली दो दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करी बैठका। और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है किहीन है कि दुनिया ये बखत अस्थिरता के दौर ले गुजरत है, फिर भारत आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प के संग विकास के रद्दा में आगू बढ़त है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठका के अगुवाई करत श्री मोदी है किहीन कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य कोति बढ़त है तो ऐसन बेरा में केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक जिम्मेवारी बढ़ जत है। उमन किहीन कि राज्य के बीच सहयोग बात और विचार साझा होना चाहिए, संगे संग नीति आयोग एमा मदद करे खातिर सबले बने भूमिका निभा सकत है। प्रधानमंत्री हकीन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौशल विकास और युवा मन बर रोजगार दिवाना ये प्राथमिकता बने रहना चाहिए। कृषि और स्टार्टअप लले के विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सबो क्षेत्र में अपन योगदान देवत है। एकर सेती राज्य मल्ला माइलोगिन के शिक्षा कौशल विकास सुरक्षा और सशक्तिकरण ला प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसो के बैठका के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठका में सबो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग लेवा थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 12 जून के दो दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उमन प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रम के संगे संग विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संगरही, संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह काली मंझनिया रायपुर के सड्डू क्षेत्र के अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होही। एकर बाद संझा कुन राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होही। संझा ही श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मनसंग बैठका करही। केंद्रीय मंत्री अवैया दिन 13 जून के कलेक्टोरेट परिसर के बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होही। और खालसा स्कूल के आगू ऑक्सीजोन में पौधारोपण करके बूढ़ा तरिया तीर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लीही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहीन है कि किसान मन के विकास सरकार के सबले पहली प्राथमिकता हरे। सरकार उखर जीवन ला सरल बनाए के हर संभव प्रयास करत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहीन कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि के रीढ़ हरे। उमन कहीन कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना किसान मन के आमदनी की रक्षा करत है, उन्हें किसानी ला और मजबूत बनावत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में रखे गए कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर के उद्घाटन वर्चुअल रूप ले करीन। ये कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत आने बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। ये मौका में श्री वैष्णव सामरिक और संरचना में ध्यान देवत आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सीमावर्ती क्षेत्र में संचार व्यवस्था ला मजबूत करे बर आकाशवाणी और दूरदर्शन ले सरकार के प्रतिबद्धता में प्रकाश डालीन, उन्हें उमन समय के संग परिवर्तन में बल दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहने कि देश के 140 करोड़ लोगन के आकांक्षा जरूर पूरा होगी। उमन कहन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है देश के भरोसा ला मजबूत करे है। नई दिल्ली में एनडीए के बैठका में बोलत उमन कहन कि बछर 2014 में आशा के जौन किरण जागे रहीस वो आज नवा आत्मविश्वास के किरण में बदल गए है। उमन यहू कहन की पहली गांव देश के जनता है देखे है कि जब कोई सरकार सही सोच ले चलाए जाते तो विकास घलो तेजी ले होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए में नई दिल्ली के भारत मंडपम में राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री मोदी ला बधाई दीन। उमन कहीन की पाछू 12 बछर जनजाति समाज के सम्मान सशक्तिकरण और विकास पर स्वर्ण काल रहे है। मुख्यमंत्री कहीन की केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास ले छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या कमती हुए है। उमन कहीन की जनजाति क्षेत्र में बुनियादी सुविधा कनेक्टिविटी और आजीविका के मौका तेजी ले बढ़वार होवत हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर कहीन है कि स्वच्छता सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नो है, भलुक राष्ट्र निर्माण के आधार हरे। स्वच्छ स्वस्थ और विकसित भारत बनाए खातिर हर एक नागरिक के भागीदारी जरूरी है। उमन कहीन की जब तक स्वच्छता जन आंदोलन के स्वरूप नहीं ली तब तक विकसित भारत के लक्ष्य पूरा रूप ले साकार नहीं हो सके। श्रीमती ठाकुर काली बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में रखे गए स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता करी। ये मौका में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू समेत आने जनप्रतिनिधि घलो मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा कहीन है कि गांव के युवा मन के बेरोजगारी मोबाइल और नशीला जिनिस की लत जैसन चुनौती ले निपटे खातिर राज्य सरकार कौशल विकास में विशेष जोर देवा थे। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम में बोला श्री मिश्रा कहीन कि सरकार 15 ले 29 बच्चर के युवा मन ला रोजगार और स्वरोजगार ले जोड़े बर अवैया 6 महीना में विशेष कार्य योजना तैयार करही। रायपुर जिला में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाए पर मिशन उत्कर्ष में काली राजधानी में सबो प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य मन के बैठका हुई। बैठका में कलेक्टर डॉक्टर गौरवसी सरलक कमजोर नतीजा देवैया स्कूल के समीक्षा करे के संगे संग विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावक मन ले फीडबैक लेके निर्देश दीन। उमन कहीन की कमजोर परीक्षा के नतीजा फर्जी पंजीयन नियमित कक्षा के अभाव और आने गड़बड़ी में कड़ा कार्रवाई करे जाही। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग 28 जिन अधिकारी मन के तबादला कर दे है। विभाग कोतिले जारी आदेश के मुताबिक जिला के शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक और प्राचार्य मल्ला आने आने जिला और कार्यालय में नवा जिम्मेवारी सौंपे गए है। महासमुंद रायपुर बिलासपुर समेत कई जिला में नवा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियुक्ति करे गए है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुए हैं। उमन श्रीलंका में होवैया T20 और वन डे सीरीज के दौरान उप कप्तान के रूप में टीम में भाग ली। वित्त मंत्री ओपी चौधरी महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होए में बधाई और शुभकामना देवत कहीन कि ये उपलब्धि उखर सरलग मेहनत अनुशासन और खेल बर समर्पण के परिणाम हवे। उमन यहू कहीन कि एखर ले प्रदेश के आने युवा खिलाड़ी विशेष रूप ले नोनी मल्ला खेल में आगू बढ़े और बड़े सपना देखे बर प्रेरित करही। राज्य सरकार विधायक मन पर अपन विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा लेके अनिवार्यता के आदेश में फेरबदल करे है। अब कोनो भी विधायक अपन विधानसभा क्षेत्र ले बाहर दिगर जिला में पदस्थ कर्मचारी मन ले सेवा ले सकी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग सबो जिला कलेक्टर मल्ला चिट्ठी जारी कर दे है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पुलिस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 जिन सदस्य मल्ला गिरफ्तार करे है। इकहत्तर ले करीबन 38 तोला सोना 1.5 किलो चांदी चोरी के रकम ले बिसाए गए चौपहिया गाड़ी 2 फटफटी मोबाइल फोन समेत चोरी में बौरे गए आने उपकरण जब्त करे गए है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन गजब दिन ले चोरी के घटना ला अंजाम देवत रहीन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नीति आयोग के शासी परिषद के बैठका में कहीन कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास ले ही विकसित भारत के लक्ष्य पाए जा सकत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह काली 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आही विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में संग्रह के संगे संग राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारी मन संग करी बैठका और प्रदेश के राजनांदगांव जिला के क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे के चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हो है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य टैंकर आक्रमणस्य विषये भारतेन प्रबलं विरोधं प्रकटितम्। एम टी जलवीर नौकायाः सर्वे कर्मचारिणः सुरक्षिताः इति सूचना अस्ति। नीति आयोगस्य सभायां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य कृते कौशलस्य वृत्त्यावसरस्य च महत्वं प्रतिपादितम्। आन्ध्र प्रदेशस्य मद्य परिवहन भ्रष्टाचार प्रकरणस्य हैदराबादे ईडी इत्यनेन सहसा अन्वेषणं कृतम्। भारतेन मालदीव्स देशं प्रति खसरा रोगस्य सूच्यौषधीनां चिकित्सा साहाय्यं प्रेषितम्। अपि च अद्य रात्रौ बृहत्तमः फीफा विश्व चषक क्रीडा आरभ्यते, यत्र मेक्सिको दलं दक्षिण अफ्रीका दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। ओमान देशस्य तटे एकस्याः नौकायाः उपरि सद्यः एव कृतस्य आक्रमणस्य भारतेन निन्दितम्, यस्मिन् त्रयः भारतीय नागरिकाः मृताः। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रिमण्डलीय वार्ताहर सम्मेलनम् अभिसम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सर्वकारेण अमेरिका देशस्य चार्ज डी अफेयर्स इत्येतान् आहूय प्रबलं विरोधं प्रकटितमस्ति। सः अस्मिन् प्रदेशे नौकायानस्य उपरि निरन्तरम् आक्रमणानि अतीव चिन्तास्पदं वर्णितानि, तथा च शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानमपि अकरोत्।
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद

0: नूतनः प्रेषकः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अशीतिः किलोमीटर परिमिते क्षेत्र रेडियो प्रसारणस्य आवरणं प्रदास्यति। एतेन जनाः विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छपर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम् अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् द्वाविंशतितः त्रिंशत् प्रतिशन्मितम् एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादम केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तम् यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यम् भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमम् सुदृढीकरणमस्ति। षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीडागृहे आरभ्यते। इति वार्ताः।

0: मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
5: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
6: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
7: प्रोडक्ट हो, सर्विस या कारोबार, जब आकाशवाणी के जरिए होगा उसका प्रचार, आपकी बात पहुंचेगी द्वार द्वार। आकाशवाणी पर विज्ञापन करने के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102 या फिर लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in या allindiaradio.gov.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हलबी लोकगीत।

लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत। मीडियम व्यू 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे, प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंड लेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता, और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों की महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
12: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
11: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल 12 जून को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही राज्य और क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक में भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह कल दोपहर रायपुर के सड्डू इलाके में स्थित

0: अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कल ही शाम श्री सिंह राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री अगले दिन 13 जून को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह सदर बाजार के पास बूढ़ा तालाब पहुंचकर विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छ जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती तब तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सकता। श्रीमती ठाकुर ने कल बिलासपुर के पुराना बाजार सकरी क्षेत्र में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने विधायकों के लिए अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों से सेवाएं प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश में संशोधन किया है। अब कोई भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर किसी दूसरे जिले में पदस्थ कर्मचारियों की भी सेवाएं ले सकेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध सांसदों के मामले में लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल और ड्रग्स की लत जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अगले 6 महीनों में विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी। उन्होंने यूएनडीपी को प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देशभर के रेल स्टेशनों पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, विद्युत प्रणाली, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग तथा अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। जहां भी सुरक्षा संबंधी कमियां मिलेंगी वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें यह जांच करेंगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ एजेंसियों और राज्य फायर विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। नवा रायपुर स्थित सेंडलेक में कल से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग किनोइंग प्रतियोगिता शुरू होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग किनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग किनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ है। वे श्रीलंका में आयोजित होने जा रहे T20 और वनडे सीरीज के दौरान उपकप्तान के रूप में टीम का हिस्सा होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महक नरवासे के भारतीय टीम में चयन होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, प्रतिभा और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। श्री चौधरी ने कहा कि उनके चयन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ी, विशेषकर बेटियां, विभिन्न खेलों में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित होंगी। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 38 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदा गया 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित चोरी में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रायपुर जिले में बोर्ड परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए मिशन उत्कर्ष के तहत कल राजधानी में सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने लगातार कमजोर परिणाम देने वाले विद्यालयों की समीक्षा करने के साथ ही विशेष निरीक्षण दल के गठन और अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमजोर परीक्षा परिणाम, फर्जी पंजीयन, नियमित कक्षाओं के अभाव और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष कक्षा दसवीं का औसत परिणाम 71% से अधिक और 12वीं का लगभग 85% रहा, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। हालांकि कुछ निजी विद्यालयों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। और नकली सोने के बिस्किट को असली बताकर कम दाम में बेचने और लोगों से लाखों रूपये की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 24 ग्राम नकली सोना, एक नकली सिक्का, कार और मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रदेश में जनसंपर्क कार्यक्रमों के साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। कल से नवा रायपुर स्थित सेंट लेक में शुरू होगी 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता। और राजनांदगांव जिले की क्रिकेट खिलाड़ी महक नरवासे का चयन भारतीय महिला अंडर 19 टीम में हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर के केंद्र है

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम बाद दादा, राम राम
1: राम राम ना अड़मा, राम राम खूब दिन लेना।
0: हाँ दादा
1: दक अड़मा।
0: हाँ दादा
1: आमी दुनो चो तो जुआर बैठे हो लुने।
0: हाँ
1: आले दाय गांव कारी दादा दीदी मन संग बोल जुआर बैठ करो ना ने।
0: हाँ ये चीज संगी बस्तर किश्वर कार्यक्रम सुनत सफाई गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोरिया संगवारी मन के मैं अड़मा
1: और मैं बादू
0: आमी दोनों करूं से
1: राम राम दखना अड़मा।
0: हाँ दादा
1: आमी तो दादा दीदी मन संग जुआर बैठ कर लू ने अल पीला उन बोल रो आत नाड़मा ने उन मन के बोले आमी दोनों चबाटले खूब एक माया करूं देव ने। नन ननी नोनी बाबू मन के आमी दोनों चबाटले खूब एक खूब माया दख अड़मा।
0: हाँ दादा
1: कहाँ तो जाऊन रेस का है नो जोरा बोल कि निकबरते हो संधका दे ऐसा है
0: हार्ड जा रहे हैं क्या दादा।
1: हाँ आठ जाऊन रेस ने
0: आओ ते तो काय काय पीला मन कच खा जाओ या सुन काय काय बात बना तो काजे साग बना तो काजे साग बोल दर उन्हें इसका
1: हाँ पीला मन काजे वो बो अगर गेन लिस काय कसन जा
0: गेन ले काय गेन ले
1: नाले पर दक पीला मन कहाँ बोल गया उसे बोलने बाती काय का तो बिताने से बोलने टाकू आदने
0: आओ
1: और रीले ने पर जो रखे ही होगी कुआत
0: आओ
1: अल मचो काज बोलान लिस काय कसन ना
0: हाँ तुझे काज बोलान लिस दादा
1: आठ बोल ले बबो बोल ले ना द कर्मा मन मन चो ऐसे ने गोटो का आठ बीती बोल बबो ऐसे उता चापार आठ हुआ है नाले पर बजिया है नाले पर गुर बबो दार बबो मन मन चो बबो मन नो ऐसे अतने असनी द का गरे गरे बोल बना हूँ से आगे बनाते रहन जैसन की पैसा कोड़ी नहीं रहते रहे उधर दाय ने किन्हीं कुन चाउर के बोल किन्हीं पुलान बात उनके पिसान बनाते रहूं और पिसान बनाने बात पर आएगी ने उन पान मंतन बढ़िया कायत करूं बुझन काते रहूं ने नाले पर कोनी दिन असली किन्हीं काउंट बाले ने उन मंडिया पिसान तो रह ची घर ने आंडी ताल निकला नून के बोल किन्हीं बबो बनाने बात बुझन काते रहूं ने।
0: हाँ दादा तो उसने आए कि आमी तो ये सब आज चीज मन के बनाऊं खातिर हूँ आगे ने मतलब आम चुपुरकती लोग मानते रहे भी लोग मन खिड़िक बुलाते जाए सब तो ये सब जीनिस मन के बोले खिड़िक खातिर अतर आए ते भी आम चो जो आगत ले खातिर हूँ जीनिस मन नी बुल को
1: नी बुल को कोई और द कागे चलो गसनी बाबा मन काते रहत और उन मन नहीं अच्छा रहते रहत बोल ने और उन मन द के ए चलो का और आगे चलो कटार ले किनी खूब परक द का दे से और मा
0: आओ दादा
1: कसन बोल ले कि ए चलो द बीमार से मार बोल किनी कागर पड़े सो और आगे चलो नहीं उतलो बीमार की मार बोल नहीं पड़ते रहत और द कागे चलो चो बाल बोल उतलो नहीं पाकते रहे
0: आओ एबे तो नन नन पीला मन पाके दादा पाके
1: से तो हम के किनी का चाचा नगद बीति बात पे जाए नाल पे साग आए असन बीति उनका तो राय और बोबो मन बोल जसन नाम चो परंपरा आगे रहते रहे ने उसने बीति बोबो मन का तो राय और दक पिला उनके बोले आजकल कि निकुबे मीठा बीति बोले निको आता रहा ने पिला बीति पिला मन के ना बोल निक आता रहे उतना मीठा और किन्हीं बड़े लोग के बोले ने और किन्हीं कुबे मीठा भी तिकाद ले बोले उन बोले अड़ना अड़ना पाए ने जैसन कि आजकल सुगर है काहे काहे मन मन चो बीमार मन बोले निकले सोत ने और दक बात पेज बोले ने आगे उन्हीं मंडिया पेज होते रहे
0: मंडिया पेज जोंद्रा
1: पेज जोंद्री पेज असन पेज होते रहे ने और ये भी पर दक दलिया काहे काहे निकल ले से ने उनके बोल पी तो रहे लेकिन आगे जैसा नाम चो आगे चलो पीते रहो तो संबिति पे जोली बात होली खाते रहो ने खातो रहे पीते रहे
0: और फिर दक दादा तो ये बात पेज की छूरता कर जब राम आठ के कसन भूल को आता ना नहीं
1: आठ के भूल को नहीं है ना
0: ये फिर राम चु बस्तर चु एकदम प्रमुख व्यंजन है बोल
1: व्यंजन है बोल ने दक अड़मा
0: हाँ दादा
1: ये तो ज्ञान ध्यान चु गोट रहे ना चलो गसनी और बोल जालावन ना सो ताले जालावन के अमरा हूँ
0: हाँ लेते भी अमरा हूँ।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे, आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे, ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी, 2 चक्का बीती गाड़ी अरु 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
8: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
9: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़। बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़। इत बूताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्निटा लेकेन 8% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 8% जीएसटी मोला तेने दोरकिता अदेन के और सुबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
0: बादू
1: हो है ना,
0: ये तोरा ला जाला मन ने
1: जाला मन ने
0: हो तो आमी तोरो जे दिन आम चो दादा दीदी मन संग का जे काई ने काई आनु आउ ने
1: हो आनु से काई
0: हो तो आज ही आम च लगे भेट वार्ता आसे
1: हो
0: आली ई भेट वार्ता के बुलाम रा देऊ
1: हो आले एता च लोगन पाते के सांग वने
0: हो
1: आले ए ओना डॉक्टर एमआर कश्यप और एवं संग भेट करे सो बलवीर सिंह कच हाले सुनु ए भेट वार्ता के
0: हाले ते भी सुनु।
10: गांवकारी भाई बहन मन असंत जानस की आजकल बल्ले बीमारी सीमारी बाज तो काजे मोर ले बल्लो ने कहा है कि जितने बायले लेकिन मन पेटियारिन हो सो ये समय ले दवाई दारू मन टीकाकरण वैसे मंतर टीकाकरण नहीं कर लेने हमके काय काय हानि हो दे काय बीमारी हो सके और टीकाकरण चुकाए महत्व है ये गोड बात हमके सांगतुका जिला से डॉक्टर एम आर कश्यप साहब। तो कश्यप साहब सबले पहले ये मैं जैसन की बल्ले कि ये टीकाकरण जो महत्व कितलो वैसे ये गोट की तुम्हें सांगा।
11: टीकाकरण जो महत्व तो खूब है जैसा नाम जो शरीर का खाना जरूरी है उसने हम जो शरीर ने जो बीमारी होए से उनके बचात काजे और बीमारी लड़तो काजे टीकाकरण करतो जरूरी है। सबले आगे मैं सांगे देखे टीकाकरण 6 जानलेवा बीमारी जो बचात काजे करुक पड़ू है उनचोल फिर और दूसरा बीमारी ले बचात काजे बोले टीकाकरण करुक पड़ू चाहे। सबले आगे जसन कोनी महिला कोनी माता बहन गर्भवती होए से तो हुदलदाए उनके टीकाकरण करतो जरूरी है। तो जसने गर्भवती होली पता चल लो ने उनके सबले आगे पंजीयन करवा हुन चोले फिर 3 नहीं तो 4 महीना बाद ने पहला टीका टिटनस जो लगातो रहे। हुन टीका हुनका लगातो रहे कि हुनचो पेट में जे पीला पलते रहे दे हुनचो टिटनस नाव चो बीमारी ले बचाव काजे हुनचो गर्भवती काल में टीकाकरण करतो जरूरी है और हुनचो काजे हुन टिटनस जो टीका हुनके लगातो रहे। जसन पहला टीका लगली 3-4 महीना जो गर्भवती काल में तो 1 से 1.5 महीना के बीच में दूसरा टीका लगातो रहे। और जसन ये तो पहला गर्भवती माता चो सांगे समय जसन दूसरा गर्भवती माता होली तो ये पहले पीला 3 साल ले नानी आसे तो उनके गोट की बूस्टर टीका लगे दे और नहीं जाले 3 साल ले बड़े होली पीला और दूसरा गर्भ ने उनके 2 टिटनस चो टीका लगातो जरूरी है। कसन बोलन है टिटनस चो टीका लगातो उनका जरूरी है कि पेट में पीला के टिटनस जो बीमारी ले बचाव हो और जन्म जो बाद में बोले टिटनस जो बीमारी खतरनाक हो गए और पीला के घेर रुक सके और पीला जो मौत बोले हो सके। हुंचल जसन पीला जन्म कर ली हुंचल फिर सबले आगे फिर हमें देखवा की और जसन पोलियो पोलियोमाइलाइटिस बोलवा हुन नाव से गोटे बीमारी हो से फिर हुंचल BCG लगावा TB बीमारी तो काजे फिर DPT टीका लगावा डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनस ये चल बाज तक आज फिर लगा पड़ गए नानी पीला मन के ये सब लगा तो विधि में सांगे से जसन पीला जन्म कर लो तो आमी पोलियो ड्राप जसन पियाऊ राष्ट्रीय कार्यक्रम में तो उसने पोलियो ड्राप हम पियाग सकू जन्म खानी 2 बूंद पिया तो रहे पोलियो ड्राप तो हुंचो हाथ पाए लूला लकवा लंगड़ा असन होतल बाज तो काजे ये पोलियो ड्राप पिया तो रहा है और पोलियोमाइलाइटिस ना हो जो बीमारी ले बाचक हो दे उनचल फिर BCG टीका लगावा बच्चा 6 सप्ताह हो दे तो उनके BCG टीका लगा सकवा तो हुंचो ने ये TB ना हो जो बीमारी ले आप लोग जिंदगी भर बचाव हो दे BCG टीका लगा तो रहा है असन बहाने लगा तो रहा है उन 0.1 ml 0.1 ml जो मात्रा उन लगे से और उनचो मात्रा उतरे रुवाई की लगात बेरा हुन सफेद चीना पड़े दे और हुन पासे हुन घाव होए दे और हुन चो चीना बनुन रहे दे तो आमी समझवा कि एक BCG टीका लग ली हुनचल फिर और 6 सप्ताह ने 10वां सप्ताह ने और 14वां सप्ताह ने एक एक महीना चो अंतराल में फिर DPT टीका और पोलियो ड्राप पिया DPT और पोलियो एक संगे संगे टीकाकरण कर सकवा डिप्थीरिया चो असन आए कि हुन चो लक्षण ये आए कि हुन गला ने सूजन ही हुआ है जैसे टॉन्सिल बोलवा हुन बोल सूजन ही हुआ है और कौन कौन समय ने हुन सांस धर तुम तकलीफ करे दे तो हुन डिप्थीरिया बीमारी हुआ है हुन चो वास्तव का डिप्थीरिया टीका लगाते रहे। पर्टुसिस बोलवा जैसन उनके कुकर खांसी बोलवा हुपिंग कप हुन असन आए कि जैसन कुकुर मन कहे हो खांस होत जोरदार खांस होत कि असन खांसी होए दे कि चेहरा लाल होए दे आँख ने आँख लाल होए दे उनचल फिर आम जो सिर बल दुख सके और लगातार खांसते रहे दे कि खांसते खांसते गुपन जाए दे उनचल बाज तो काजे ए DPT टीका लगावा हुन पर्टुसिस नाव से बीमारी बाज तो काजे उनचल फिर टिटनस जो टीका उन गर्भकाल ने तो गर्भवती माता का लगाते है फिर पीला जन्म कर लो बाद में फिर टिटनस जो लगाते ते बले ये टीका एक संगे संगे चल सके DPT और पोलियो ये एक एक महीना अंतर में 1 साल चो भीतर में 3 बार लगाते रहे। चल फिर पीला जसन बाढ़ लो 9 महीना हो लो तो 9 महीना और 12 महीना बीच में एक मिजल्स नाव चो टीका लगाओ मिजल्स नाव टीका बीमारी बाज तो काज लगाते रहे असन काज की उनके छोटे छोटे दाना दाना शरीर नहीं हुआ है लाल लाल हुआ है बुखार संगे ये अक्सर गर्मी दिन ने नहीं तो गर्मी शुरुआत में हुआ है हुंचो ने कोनी कोनी पीला के मृत्यु बोल हो सके हुंचल बाज तो काज ये मिजल्स टीका 9 ले 12 महीना बीच में लगातो रहे। ये मिजल्स टीका जसन लगावा हुन संगे संगे आमी रतौंधी नाव चो बीमारी सुन लो रास है तो रतौंधी नाव चो बीमारी बाज तो काज हम विटामिन ए चो सिरप बल पिलावा 9 से 12 महीना बीच में विटामिन ए सिरप 2 साल चो छोटे बच्चा के 1 ml पिलावा और 2 साल चो ऊपर चो पिला के उनके 2 ml पिलाते रहे। माने 1 लाख यूनिट नानी पिलामन के और 1 लाख ले ज्यादा यूनिट 2 लाख यूनिट बड़े पिलामन के 6-6 महीना चो अंतर में 3 साल तक पिया तो रहे ते बोले विटामिन ए चो सिरप पिया लने रतौंदी नाव से बीमारी बाचक हो दे उनचल फिर जसन पीला 1 साल ले धरुण भाती 2 साल चो बीच में उनके फिर गोटक बूस्टर टीका फिर लगावा कसन बोलो ने आगे 1 बार पोलियो टीका डीपीटी टीका ये सब टीका लगा लो उनचल फिर उनचो शरीर से प्रतिरोधी क्षमता बीमारी ले लड़ तो क्षमता बढ़ात काजे फिर 1-2 साल चो बीच में फिर लगावा डीपीटी नाव चो टीका एक 16 महीना ले धरुन 24 महीना बीच में 1-1 महीना चो अंतर में एक लगा तो रहा है उनचल पास फिर जसन पीला बाढ़ला जो 5 साल चो होलो तो गोटक 1 टन डीटी नाव चो टीका लगा पुड़ गए डिप्थीरिया टाइफाइड का है डिप्थीरिया बीमारी जो आगे लग ली 1 साल के भीतर में उन चले 5 साल जो उम्र पीला काज फिर डिप्थीरिया और टाइफाइड जो फिर बाज तो काज फिर टीका लगा पड़ुआ है डिप्थीरिया जो आगे में सांगु रहे टाइफाइड बीमारी बल खतरनाक है उन बुखार संगे शरीर जो खून के तोड़ मरोड़ करुआ है और पीलिया बल हो सके उनसे शरीर कमजोर हुआ है बाल बल झड़क सके तब उनका डीटी नाव चो ये डिप्थीरिया टाइफाइड टीका 5 साल की उम्र ने हर बच्चा के लगातार जरूरी है उनचल फिर जसन पीला बाढ़ते गेला फिर 10 साल चो होलो तो फिर टिटनस टीका फिर लगातो रहा टिटनस टीका लगा लो ने हुन बढ़ती उम्र आए कोनी पीला मन एबाठमाट दौड़ुआत परवात तो हाथ पाने लागू आए तो टिटनस जो कीटाणु का है माटी नहीं रुआ कहीं कूड़ा कचरा नहीं रुआ तो उनचो कारण में उनचो घाव ने इन्फेक्शन फैला उनके टिटनस को रुक सक उनचो हुनी का 10 साल चो पीला मन के लगातो रहा है उनचो हुनी टिटनस टीका फिर 16 साल चो उम्र ने लगातो रहा है हुनी टिटनस बीमारी लुबास तक है जन्म ले धरू 16 साल तक इतरो टीकाकरण पूर्ण हो ली जाले सभी बीमारी ले बास तो काजे आम के हो सके
10: तो डॉक्टर कश्यप जैसन की ये जोन पूरा जोन टीका है बोले गांव चो अस्पताल मन ने बोले सुविधा आसे
11: हाँ आसे गांव चो अस्पताल में जहाँ जहाँ लाइट आसे उन थाने आमी उन दवाई संगत काजे उन डीप फ्रीजर मशीन और एक ठन आईएलआर नाव चो मशीन के संगावा तो उन थाने जहाँ सुविधा आसे हुन कितरो एरिया के कवर करे दे हुन थाने दवाई संगावा और हुन चो काजे कोल्ड चेन बलवा मेंटेन करतो रहे जसन हुन दवाई आए कि किस तापक्रम ने संगावा जीरो ले -0 डिग्री नीचे संगात काजे 2 प्रकार चो टीका रहे से उनचल फिर बाकी टीका मन 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड चो तापक्रम ने संगावा तभी हुन टीका सुरक्षित रहे दे और हमचो शरीर ने लगा लन बोले प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाए दे
10: तो डॉक्टर एम आर कश्यप साहब तुम इतना अच्छा बोलने टीका करण चुकाए महत्व है से चुकाए फायदा है से एक गोट के सांगला साले राम राम
11: राम
0: तो बादू
1: हो है ना
0: ये तो बीट मार तारे ली ने
1: हो ये टीका कारण बारे में सांगते रहते ने और एक ही आमचो गांव कारी दादा दीदी मन वाले सुन ला होती और ये इता डॉक्टर रहे एम आर कश्यप और ये मन संग गोट बात करते होत
0: बलबीर सिंह कच ने
1: तो लक्मा अड़मा बोलने लकमा लकमा पुनः एक लकमा के बेड़ घटा रहे उनकी सुरता है ऐसे अड़मा मैं बोलते रहे कि फोन आमी का तो पी तो भी गोटमन निकरान रहो ने जसन बात आए पे जाए ने द कसनी गोट का तो ने बोले ऐसे कोसरा है घटका है ने और ये भी ती द आजकल गांव ने बोले कि नी कमा तो ने कम कमाए सोतने और द कम मतो के चो मोल बोल पे रखी नी खुबे
0: मांगोली से
1: मांगोली से तो आमचो गोटे ही आए कि एक आमचो दादा हूँ नागर लाकर कमाओत ने आगे तक कोसरा चो बात बोल काते रहूँ नाले पर चाउर ओकरा निरल ने कोसरा चो भेज के बोल बनाते रहू ने और एक खाते रहू दके दाय हड़मा
0: हाँ दादा
1: हम जो जा तो समय आवे से ना आले विदा दरु बोलते
0: हां हाले मैं मोटरसाइकिल से तू विदा दरते
1: बस्तर के सर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजान और संगजोरिया संगवारी मन के मैं बादू
0: और मैं हड़मा
1: हम दोनों करू से
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर, मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जुहार बादू जुहार
1: जुहार अड़मा जुहार ना
0: आले तू मैं तो भेट गाटो लुने
1: लुने
0: हाओ आले आम छो किसान दादा दीदी मन संग बल भेट गाटो ने
1: हो
0: तो किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सफाई खेतिहार दादा दीदी मन की मैं अड़मा
1: और मैं बादू
0: आमी दोनों करूं से
1: जुहार
0: हाउर दख दादा आमी तो भेट गाटो लुने
1: हो
0: और दाय बतरम रे से खेती कमानी करतो ने
1: हो खेती कमानी करतो समय तो

0: उन्होंने बोल दे सो दूर तो बिता
1: हाँ
0: और आजकल असन असन कल मशीन वन निकलला से अड़मा जे कि चले नवा नवा कल मशीन निकलला उन चले हम तो समय बचे से ने जसन के आगे गाय बोला उन संगे जोपते रहूं और गोटक नागर नाल दुई नागर तीन नागर ज्यादा ज्यादा पांच छह नागर असन जोपते रहूं ने जे चोतन गाय बोला उन रो तो उन मन गए अंतर बे तो घरे घरे असन ट्रैक्टर पारा पारा ने निकल ली से ने आर दक ये तो जॉब तो काजे होली अड़मा असनी मीन तो काजे बोले नवा नवा कल मशीन मन निकरला से ने मीन तो काजे हो नाली पर काट तो काजे हो नाली पर आजकल दक उन रोप लगा तो काजे बोले मशीन मन निकरला से तो असनी मशीन मन के आम के आगर ले अगर आम चो किसान दादा दीदी दीदी मन काजे उपयोग करते रहे ने
1: जसन जसन जसन दिन दुनिया बदलते जासन उसन उसन आम की खेती किसानी करता बोले जो मशीन मन निकरला सत उन मन चबल उपयोग करतो जरूरी आहे ने
0: जरूरी आहे का
1: तो ते भी तो आम्ही अच्छा फायदा दरवा ने
0: हो आओ और दक आगे जसन की जेट बेरा उतलो नी कमाते रहत ने
1: आओ
0: एंदा जब ले उन बोरोली नाले पर सौर ऊर्जा विति तो को निकाल ली से ने उन ओली उतलो ने पर दा आम जो किसान दादा दीदी उन बोले डबल फसल और के कोनी कोनी तीन अरबल फसल
1: दरे
0: सो असन ने जसन आगे जा जसन चुहा से उतारे पानी जीखते रहो तो
1: टेंडा
0: बनाते रहो नाले पर गोटो कुन डीजल वित्तीय मशीन रहे ने उन चले पानी जी कौन जपाते रहो ने अंतर एबे तो असन नो आयाड़मा एबे पूरा ड्रिप सिस्टम होली ने उताए पानी बोल जाए से संगे संगे उताए दवाई और खद बाद बोले पूरा उन पाइप द्वारा उन
1: भूटा मन के
0: अमरे से और पानी चो बोले उतलो नुकसान नहीं करत ने जितलो पानी या जरूरत से उतले ही देश हो और जोन पौधा की जितलो मिरे से मिर्तर रहे से उतले ही मिरे से अगर बोल नहीं मिरे ना कम बोल नहीं मिरे ने
1: एक्चुअली जो पानी जोन बेकार जाते रहे ने जो पकड़ खर्चा होते रहे ये बात उन बात जाते रहे उन पानी भाई उन जोन फसल दर लो सुनी फसल के मिरे से और एक्चुअली आम चो जोन पानी आए उन बाचे से जान ने और ये सब आए बोलो ने आधुनिक कृषि यंत्र मन ओली से उनका जे सब चीज मन
0: कमानी करे सोते हम किसान दक आगे नहीं गुटकी फसल कमाते रहो ने जसन समाज लिए बे तो पानी ले नहीं कमाते रहो जोंदरा है नल पर मंडी है दान है कोसरा है ने मानतर बे तो दकना जेड बेरा बोले गांव गांव ने बोले कोनी कोनी वट जे चलक पानी चो सुविधा से ने उन मन जेड बेरा बोले जोंदरा कमाए सो और दान के बोले उसनी कमाए सो और कोनी कोनी किसान दादा दिन मंडिया के बोल जेड बेरा कमाए सो ने ये सपाय एबे नवा नवा कल मशीन मन निकलला से और ये कृषि यंत्र मन नवा नवा तरीका मन निकलला से तेबले होय से ने
1: और ये मशीन मन चो फायदा उठा तो खूब जरूरी है
0: जरूरी है का
1: आओ ते भी तो आमी अच्छा नापा दरो ने
0: यो
1: और आम चो किसान दादा दीदी मने चो भरपूर फायदा बोल दरे सोत
0: दर तो बिताऊं ना जो नी दर तुन मन बोले किंडी के वट उन वट पूछा रुसा करन बाती किंडी कुन मन बोले उन कमातो तरीका के किंडी
1: जान सोत ने जान तो कोशिश कर सोत
0: करे सोत और करे सोत बोल ने अड़मा ये तो रहे गोट असनी आम चल गए और बोले गोट मन आसो ताले एक गोट मन के बोले हम रहा हूँ
1: आले ते भी हम रहा हूँ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस
4: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है
4: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
6: जीएसटी परिषद बुधवार के घोषणा कर ली से कि सरकार सिर में टुपरे जीएसटी चो दर के

0: कम कर ली से। ए बार ये दर 28% ले कम होन 18% होली से। कर ने कमी होले ए बार घर और कारखाना असन बड़े प्रोजेक्ट बनातो ने सहायता हो दे। असने संगमरमर और ट्रेवर्टिन ब्लॉक मन ने कर चो दर 12% ले कम होन 5% होली से। ग्रेनाइट ब्लॉक उपरे बले एबर 12% चो पलटा 5% GST लागे दे। एचे संगे रेती चूना चो ईंटा अरु पखना जोड़तो काम उपरे बले कर चो दर 12% चो जगह 5% होली से।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हिसाब ने ए वार्ड बनली से कि देश चु सप्पाई बेड़ाने कोनी नहाले कोनी हिसाब ले पानी हमरा तोर गोठ हो। एचुकाजे राज्य आरु जिला स्तरीय समिति चु दखा रखाने सप्पाई काम होए दे।

0: घोषणाला अभी निकाल के मुड़ के नला आता पुंड ने के बात मनाल बात बात पाल वाटी ताल गले नलकी ताल असुनता नलकी ताल मती सुनता एक टेंगिया रोगिन तो राशवी अभी दिन कोनी नलकी ये पर नहीं हो और कूटाल का था अब मनाल ऑन मत वाता अभी नीन बांधा की तोर अद्वैन अर्दी तबो इतके सुई कौन लगा कि ये वैसी तई लोप लोप बात बीमारी लगे मत तांग कौन सुई लगे मत के
1: सुई लगे मत के ना दवाई अगर लोप नहीं
0: बताए लोपन ते तुम के खत्म आता
1: तीन मतलब बात है पशु चिकित्सा लाए ताकि बेचुटा जुट सीवियर बात है मतलब लगे मानता
0: हाँ सीवियर लगे मानता ब्लॉक ब्लॉक तक सीवियर लगे मानता और नारदरोर पटवारी को नहीं हो कोतवाल पटेल वेरकिंग केते विसिता पे उम के नारदे मुनादी की तोर नारदे गए शिविर लगे मायम था बात बात बीमारी तुन मैं देने गए वायम तोर अद बीमारी था वैक्सीन बात वैक्सीन लगा की तोर और टीका टीकाकरण की तोर और मतलब डोय तक कालाम और मुसूर तक कालाम तो मैं देन शिविर लगा की तोर मतलब मुनेर के नीत बीमारी आई माँ की जॉन वैक्सीन लगा की तोर और शिविर लगा
1: तो नंदम नीव पे देर पूछ के ले मरगे मत दीदी इंजे माड़ेंग माड़ेंग नीव पे देर के चीम
0: नम ना ना पे दीर रमा ध्रुव पशु चिकित्सालय क्षेत्र अधिकारी नना सहारे मंतान और ना सर्विस ना कमाकिने सर्विस वेंडे ये जगदलपुरे मिंदे
1: तो माँ स्टूडियो तक वत्ती समय ती तेन मिले निके निके निके धन्यवाद दीदी
0: राम राम जोहर जोहर जय छत्तीसगढ़ छह बस जय बस्तर
1: बादू ये तो खाए मजा बेट वार्ता रहे ने ये बेट वार्ता भीतर रहे रमाद्रु ये आत डोर डॉक्टर मान के आत ने ये पशु जानवर मंचो बीमारी मंच बारे में अच्छा जानकारी देते रहे
2: और एवं संग गोड़ बाट करते रहो
1: जयराम कवासी
2: कवासी
1: तो दादा
2: दक्की गोट मन के तो हम जो किसान दादा दीदी मन बोल सुन लावे ने सुनन बाती जसन के था सांग थे रहो उन टीका के बे लगाते रहे ने ये सब आए के उन मन समय रहो तो के आगे लगान रहते रहे ने तो अरमा असनी हम चल लगे और बोले गोट मन ना सोता ले गोट मन के हमरा हो ना
1: आले थे बे हमरा हूं
3: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
4: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
3: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
5: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया।
3: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
6: सन्ना पुट्टा उद्यमिगळन्न मत्तष्टु अग्रिकल्चरली हेच्चु नावु इन्नष्टु साधने माडलिक्के कारणकारितवादंत ई अग्रिकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इंद नम्म इन्नष्टु योजनेगळु आलोचने आयोजनेगळु उत्तमगोंडिदे।
3: राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
7: सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिलता है हरिया को। हरिया अब आप सबको बताएंगे अपनी सफलता का राज।
8: मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप भी अपने खेतों में उन्नत फसल उगा सकते हैं।
9: वो कैसे?
8: बस जब भी कोई समस्या हो तो तुरंत मिलाइए ये नंबर 1800-1501551।
10: ये किसका नंबर है भाई?
8: किसान कॉल सेंटर का, जहां विशेषज्ञ आपको खेती की समस्याओं का हल देंगे तुरंत।
11: अरे भाई, विशेषज्ञ हर समय थोड़े ही बैठा मिलेगा।
8: बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, साल के 365 दिन मिलेगा, वो भी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
10: पर भैया, लंबी बात करेंगे तो पैसे बहुत लगेंगे।
8: कोई पैसे नहीं, मोबाइल से या दूसरे फोन से किसान कॉल सेंटर मुफ्त कॉल करो, सलाह के भी पैसे नहीं।
12: सच
8: 16 आने सच।
3: किसान भाई, खेती की समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801551 पर मुफ्त संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
1: बादु
2: होय ना,
1: ये जहाला गुड मन के तो हम रान दिलू ने, और हम तो मोडरा ने बेड वार्ता बरेली उनके बल सुनान दिलू ने, आए दाए गोटो गीत के सुनान दिलू ना। चौथी बलते रहे मैं
2: गीत ज्ञान ध्यान संगे गीत गोविंद सुनतर को भी जरूरी है ने। हाली अड़वासनी गीत आसे ने, और ये गीत के गाला से
1: चंद्रिका पोया हमारे उन मंचो संगवारी
2: नाले सुनाओ ये गीत के।
1: हाँ

0: हाँ तो हड़मा
1: हाँ बादू
0: तो ये बोले गीत के सुनन बात का हरा जो मुड़ी कहलाते रहे इसने
1: हाँ गीत बोल तो उसने रहे दादा बतर बोले आमर जिस नहीं नांगर दर्द तो बीती
0: खेती बाड़ी नांगर दर्द तो बीती ने
1: हाँ
0: और ये गीत के गाउन रो चंद्रिका पोया मोर है मंचो संगवारी मन ने हड़मा
1: हाँ दादा
0: अलना इधर हम चो जातो समिया बोले ऐसे ने और मोटा गड्ढा के बोल सकलो और विदा दरु बोलते रहे ने
1: हाँ लेते भी तो जातुपुरे किसान वाणी कार्यक्रम सुन तो सफाई के तिहार दादा दीदी मन की मैं अड़मा
0: और मैं बादू
1: अमी दोनों करूं से
0: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों बहनों के लिए प्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम डांडा माली में आज सुनिए दशमी और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

0: डांडा वाली कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दशमी और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन का जिगोट। प्रस्तुत करता है गोपाल पोयाम।

पिला मन चो गोठ कार्यक्रम सुनतो सप्पाय नानी बड़े पिला मन के मोचो वाटले खुबे खुबे माया पिला मन जीवनाने आगे बढ़तो काजे तुम के असल लोग नाले महापुरुष मंचो जीवना के जानू पड़े दे जोन आप लो जीवना के आगे बढ़ाऊन सफल होन रला मांतर सफाए लोग जोन आप लो जीवना ने सफल होला सबू के खुब्बे संघर्ष लड़ाई त्याग करू पड़ून रहे और ए भी बोले कोनी बोले क्षेत्र ने सफल हो तो काजे मेहनत मसागत बलो ने संघर्ष करूक पड़े से असनिची रला सावित्री बाई फुले ये आपलो देश चो पहल शिक्षिका रला हुन मंचो ले पहल कोनी बोले मेहरार बहन जी बनो नी रला कसन की हुन समयाचो समाज ने बायले मन के पड़तो अधिकार नी रली घर ले बाहर निकर तोर बोले मना रली मनुक मंची घर ले बाहर चो जुगे काम के करते रला सावित्री बाई चो जन्म महाराष्ट्र चो सतारा जिला चो गोटो गांव नवा गांव ने होन रली सन रहे 3 जनवरी 1831 होन दलित परिवार ने जन्मन रला हुदलदाएं भारत ने अंग्रेज मंच शासन रली और समाज ने बाहले मन संगे खुब्बे भेदभाव होते रहे घर ले निकरुक बोले नी देते रहो तो पड़ुक लिखु कसन देता मानतर यही मंजी सावित्री बाई पढ़ुन देश चो पहल शिक्षिका बन ली सावित्री बाई चो बिया 9 साल चो उम्र ने ज्योतिबा राव फुले संगे होली ज्योतिबा राव चो उम्र हुदलदाएं 13 साल रहे बिया हो तो बेरा सावित्री बाई बोले अनपढ़ रही मानतर सावित्री बाई चो पढ़तो मन के दखुन ज्योतिबा फुले खुब्बे हरी होला और आप लो बायले के पढ़ा तो विचार करला बिया बेरा ज्योतिबा फुले हुन मन बोले 3री पढ़ते रहोत मानतर खुबे सामाजिक कमजोरी के पार पाउन दोनों पढ़ाई करला सावित्री बाई अहमदनगर और पुणे ने टीचर टेरलिंग करून शिक्षिका बनला पाछे दोनों पति पत्नी मिलून पुणे ने सन 1848 के लेकी मंचो पहल स्कूल खोलला ये भारत चो पहल स्कूल तो रली जोन थाने लेकी मन के पढ़ाई मूर होली दोनों मिलून देश ने 18 स्कूल खोलला सावित्री बाई ये स्कूल चो प्रधान अध्यापिका बनली और स्कूल ने सबू जाति चो लेकी मन पढ़तो काजे बोलला एके दखुन दलित कमजोर वर्ग चो लोग मन पहिल हार स्कूल ने आपलो बेटी मन के पढ़ाओ मुरियाला लेकी मन के पढ़ाए से बोलून पुणे शहर चो बायले मन खूब्बे विरोध करुक मुरियाला नुकसान अमरा तो काम के करुक मुरियाला जेवे सावित्री बाई स्कूल पैदल जाए तो बाटे बायले मन पखना ने मारत और गोबर उपरे पकाओत बोलत ये लेकी मन के पढ़ाए से धर्म के नशाए से सावित्री बाई दुई जोड़ी कपड़ा स्कूल नेते रहत और गोबर होलो कपड़ा के निकराउन नंगत कपड़ा पाछे फिनते रहत लेकी मन स्कूल एवत और स्कूल के नी छाड़त असन विचार करून हुन मन छात्रवृत्ति बले देउक मुरियाला पाछे सावित्री बाई बोलने विधवा बायले मन काजे आश्रम बले मूर करला संगे संगे बेसहारा बायले लेकी बाल विधवा और परिवार ले कई कारण ने खेदलो मेहरार लेकी मन के बले आश्रम ने संगाओक मुरियाला ये मन के सावित्री बाई खुदे पढ़ोक बले मुरियाला आपलो मनुख ज्योतिबा फुले संगे मिसुन सत्य शोधक समाज संगठन एमन बनाला जोन बिना पुजारी और दहेज ले बिया बले करुन देते रला समाज ने नवा बाट दखाओक मुरियाला सावित्री बाई आपलो समाज संगचो संघर्ष और सच्चाई के पूरे आंतो काजे कविता लेख बले लिखते रहोत हुन मंचो 4 कविता संग्रह बले आसे सावित्री बाई लोग मंचो सेवा ने केवई पाटकुती नीरला गोटक समय पुणे ने प्लेग बीमारी फैल ली प्लेग मरीज मन के यमन दिन रात सेवा जतन करते रला और यही सेवा जतन करते करते सावित्री बाई के बले प्लेग बीमारी होली एचो ने सन 1897 ने ये मंचो मृत्यु होली तो असन रहोत सावित्री बाई फुले जोन समाज का जे आपलो तन मन धन ले काम करला और बायले लेकी मन के पूरे एतो बाट के दखाला आखिर ने जानू सावित्री बाई फुले चो विचार मन के जोन जीवना चो नुआ बाट के दखाए से हुन मन बोलला शिक्षा स्वर्ग चो बाट आए शिक्षा ले खुद के और खुद चो ताकत के जानू खोए से हुन मन सांगला की आपलो स्वाभिमान के जगह तो काजे जुगे ले जुगे पढ़ाई करा
और पाठशाला च मोल के जाना जोन की सोना चांदी चो बराबर है। अज्ञानता के जाना धरा और पेटून लड़ून आपलो जीवना ले खेदा। बेटी के बिया कर तो पहिल नंगत पढ़ावा जेचो ने खुद जानुक सके दे काय सही है और काय गलत। बायल लेकी चुचाए घर चो काम काजे नहीं बनला से हुन मन मनुक पिला ले बले नंगत काम करुक सकोत। और उन मन च विचार रहे जितलो तुम्ही ज्ञान के पहा से उत्तरो मन ले डर मेटे दे। तो पिला मन ये तो रली सावित्रीबाई फुले चो जीवना चो गोठ मांतर एबे मैं तुमचे पूरे आनंद से गोटोक कायरसिया गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जेगोट, प्रस्तुति थी गोपाल पोयाम की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं

0: अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
4: The visit will provide an opportunity.
5: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
4: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
6: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
7: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार

0: को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको पांच पांच किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक अपारा मयारी इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को

निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: by the world as major economies are facing uncertainty, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Center and governments of Assam and Nagaland ink an MOU for exploration and production of crude oil and natural gas. New Delhi strongly condemns US strikes on oil ship which killed three Indian sailors off the coast of Oman, summons US Chargeable Affairs to lodge protest. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to women's singles quarterfinals of Australian Open, and FIFA World Cup 2026 to kick off tonight, Mexico to take on South Africa in the opening encounter at Estadio Azteca in Mexico City. That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। आज इस कार्यक्रम का विषय है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। प्रस्तुति है बलबीर सिंह कचकी।

0: सुना हो दादा दीदी मन गोट के मोचो सुना, पंचायती राज ने मेरे लोहक तुम्ही जमाय जाना। सुना हो दादा दीदी मन गोट के मोचो सुना, पंचायत राज ने मेरे लोहक तुम्ही जमाय जाना। गांव पाराचो जमाय लोग गोट के मोचो माना, पंचायती राज आमचो काज ध्यान देऊन सुना। गांव पाराचो जमाय लोग गोट के मोचो माना, पंचायती राज आमचो काज ध्यान देऊन सुना।
1: पंचायत राज चो बड़े असन आरो बरसक मुंडरा के धरुन हारक मैं फेर अमर ले तुम चलगे, तुम्हें जमाय जानास जीवना उजर कर तो काजे, देश दुनिया के जान तो काजे, अकल बुद्ध पाव तो काजे, खुब्बे मान पाव तो काजे, नगद जीवना जीव तो काजे, पढ़ई लिखई चो कितरो मान आसे। घर ले पारा होली पारा ने गांव, गांव चो बाड़ती काजे पढ़ुख लिखुक जाऊं। घर ले पारा होली पारा ने गांव, गांव चो बाड़ती काजे पढ़ुख लिखुक जाऊं। देश बदली जुग बदली चतुर हो तो राय, मचो दादा रे मचो दीदी रे पढ़ुख लिखुक सबके जातो राय। देश बदली जुग बदली चतुर हो तो राय, मचो दादा रे मचो दीदी रे पढ़ुक लिखुक सबके जातो राय। मांतर एदाय देश बले से पूरे इया हो, मचो भारत माटी चो लोग, पढ़ा लिखा हूँ जमाए अदाय, पढ़ा लिखा हूँ जमाए अदाय, मिरली आम की जोग। आरु एचुकाजे शासन बनाली, निशुल्क आरु अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, एचु सरलगा क्रमांक 35, सन 2009 ने लिखलो आसे। 6-14 बरक चो जमाए पिला मन के होका आरु अनिवार्य शिक्षा बल्ले पढ़े लिखे चो हक आसे। भारत गणराज्य चो 60 बरक पुर्तो के पिला मन काजे होका आरु अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सरकार बनाली। आरु एचो दखा रकाचो जिम्मे पंचायत के सौंपली। ये अधिकार आम के मिरलो पाछे पंचायत जांच करुक सके, कोनी तय कर लो स्कूल फीस ले आगर पैसा तो निमांगे से, कोनी स्कूल ने नियम ले बाहरी जाओ।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग नहाले सामाजिक आर्थिक हिसाब ने गरीब लोग के पैसा फीस तो निमांगसोत, असकत लेका लेकी के कोनी फीस पैसा तो निमांगेसोत। असन अधिकार आम के आम जो पीला मन काजे पहली कक्षा ले धरुन आठवीं कक्षा तक जो पीला मन के पढ़ा तो काजे अनिवार्य आरु निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ने मिरली से एके प्रारंभिक शिक्षा बलतर होए से।

एचो दखा रखा हक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत ये जमाए के एचो हक मिरले से। ये अधिकार भीतरे 6 बरख ले धरुन 14 बरख तक चो उमर चो जमाए पीला जिला के अधिनियम चो धारा 2 खंड 6 और 50 ने मिरले से। पीला चो 8वीं तक चो पढ़ई आपलो लगे चो स्कूल ने होका पढ़ुन पूरा कर तो हक मिरले से। कोनी पीला असन स्कूल ने भर्ती होन पढ़ई ने दूसर पीला ले जुगे कमजोर रले उनके विशेष ट्रेनिंग देउन पूरे चो कक्षा तक अमरा तो काजे बले नियम आसे। हुंचो उमर हिसाब ने पूरे चो कक्षा ने अमरा तो जिम्मे स्कूल चो रहे दे। कोनी पीला पढ़ई ने कमजोर आसे और हुन दूसर स्कूल काजे टीसी मांगे से जाले अधिनियम चो धारा 2 चो खंड ढ उपखंड 3 आरु 4 ने दूसर स्कूल ने टीसी ने उन पढ़तो अधिकार आसे। असन टीसी कोनी पीला नहले उनचो घर चो लोग मांगले स्कूल चो हेडमास्टर नहले हुनके चला तो बिता तुरते टीसी बल्ले स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दे। मांतर कसने करुन बले केंद्र सरकार चो स्कूल नहले राज्य सरकार चो स्कूल पहले ने धरुन 8वीं तक पीला चो पढ़ाई के पूरा कराए दे। 6 बरख ले 14 बरख तक चो पीला के भर्ती कर तो काजे कोनी बले स्कूल मना करुक नी सके। मांतर असकत पीला मन के पहल ठान दे तो स्कूल चो जिम्मे रहे दे। कोनी प्राइवेट स्कूल ने पीला चो माए बाप नहले उनके दखा रखा कर तो लोग होका पढ़ाई काजे गुहार करुक सकोत मंतर दावा करुक नी सकोत। निःशुल्क आरु अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ने गुरुजी मन के बले पूरा ट्रेनिंग दे तो उवाट आसे। एचो काजे गुरुजी शैक्षणिक कैलेंडर बले बना दे। पीला के पहले ले 8वीं तक पढ़ा तो काजे माए बाप नहाले पीला के पोस्तो बिता चो जिम्मे आए हुन पीला के स्कूल ने नेउन भर्ती कराओ। भर्ती करालो पाछे स्कूल चो मुखिया चो जिम्मे आए हुन पीला के अनिवार्य शिक्षा बल्ले पहले ले 8वीं तक चो पढ़ाई पूरा कराओ। पहली कक्षा ने भर्ती काजे जन्म मृत्यु विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886 चो उपबंध 6 हिसाब ने कागज पत्र लागे दे। मांतर कोनी पीला लगे जन्म प्रमाण पत्र नीरले अस्पताल नहाले स्वास्थ्य केंद्र चो नर्स पंजीयन रजिस्टर नहाले आंगनबाड़ी चो रजिस्टर नहाले माए बाप चो घोषणा पत्र के मानतो राय। मांतर हुनके कोनी बले गुरुजी भर्ती करतो काजे मना करुक नी सके। कोनी बले पीला 5वीं नहाले 8वीं चो नियमित परीक्षा ने फेल होले उनके गुरुजी 2 महीना तक सरलगा पढ़ाउन उनके पास करे दे। 2 महीना पढ़ुन बले पीला फेल होले उनके अधिनियम चो धारा 2 हिसाब ने फेर परीक्षा धरुन आगे कक्षा ने अमराय दे। नहाले हुंचो प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाई पूरा होतले गुरुजी उनके पढ़ाए दे मंतर स्कूल ले पीला के निकराओ ने सके। गुरुजी कोनी बले पीला के शारीरिक दंड नहाले मानसिक दंड नी देख सके। निःशुल्क आरु अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ने गुरुजी मंचु काम काज बले नियम बनली से। ये नियम हिसाब ने गुरुजी समियाने स्कूल आयदे अधिनियम चो धारा 29 उपधारा 2 हिसाब ने पाठ के पूरा पढ़ाए दे। कमजोर पीला मन के अनगर ध्यान देउन पढ़ाए दे। पीला मंचु माए बाप संगे पीला मंचु नगद पढ़ाई काजे सर लगा बैठक करे दे। गुरुजी के जनगणना चुनाव

जमाए के सुनलास नफा धरा आज गांव पारा च बाढ़ती काजे बनली पंचायती राज। जमाए के सुनलास नफा धरा आज गांव पारा च बाढ़ती काजे बनली पंचायती राज। आज जो भाग के एताय थेवाउन धरे से मोच बाट नुआ भाग संगे फेर होंदे तुम चो संगे भेंट घाट। आज जो भाग के एताय थेवाउन धरे से मोच बाट नुआ भाग संगे फेर होंदे तुम चो संगे भेंट घाट। सेवा जुहार।

0: हम पंचायत की विकास गाथा। आज का विषय था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार। प्रस्तुति थी बलबीर सिंह कच्छ की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: घुमकली कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कमलोचन और साथियों के स्वर में नाट गीत।

0: घुमकली कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे थे कमलोचन और साथियों के स्वर में नाट गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है नफीस आलम ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

अगला गीत हमने लिया है ऋषा शर्मा के स्वर में। रचनाकार हैं रानी मलिक, माया गोविंद, संगीतकार हैं ललित सेन।

इसी के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बर्फी फिल्म के गीत से। आवाजें हैं निखिल पॉल जॉर्ज और श्रेया घोषाल की। गीत रचना है स्वानंद किरकिरे की। संगीतकार हैं प्रीतम।

अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं जीनियस फिल्म से, आवाज है आतिफ असलम की, बोल है मनोज मुंतशिर की, संगीत बद किया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत है फिल्म राब्ता से। आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की। शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की। संगीतकार हैं प्रीतम।

आइए अब सुनते हैं रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ का गाया गीत। फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो। गीत रचना है कुमार की, सुर में पिरोया है रोचक कोहली ने।

अगला गीत है पलक मुच्छल और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है प्रेम रतन धन पायो। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म एतराज से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। शब्द समीर के हैं, धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की

0: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said, when many major economies are facing uncertainty,

अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।